0: छा अव्हां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो। हाणे वक्त आहे चमकण जो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो, जीअं हुजे हीरो। हेमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
1: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
2: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
2: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं। डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली। खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओरिजिनेटेड यूरिफिटेड,
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
2: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल,
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
2: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स ऐं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवां जी स्किन के बनाए निखरी ऐं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म ऐं डीए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डीह जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
1: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
1: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं में
2: सीज़र नॉर्मल डिलीवरी आंडे पिथे मसाने ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
1: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
2: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
1: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
2: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
1: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी औरतुन बारड़न जो इलाज अल्ट्रासाउंड।

0: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
1: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर खां ख़िदमत सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर प्यूरिफिटेड
0: जेको पेश करे तो 330 ml
1: जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जो बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
0: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे
1: अवां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे।

0: अतीका सईद
1: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 247-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशि ख़बरी।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी, सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा

0: असां वटि रीफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
1: अव्हां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
0: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
0: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
1: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: பயன்.
1: It's 11 AM. This time check is brought to you by
2: Uncle Habib. Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
4: पाकिस्तान हमेशा गैर जानबदार तामीरी ए जिम्मेवार सहूलतकारी जो किरदार अदा कया है. गालिन के पे दौर में ईरान ए अमरीका जा केतरा ही जहाज पाकिस्तान पहुंचा हुआ. बाद में थन्दड़ इम्कानी दौरन सबब कुछ जहाज इमदादी अहलकार पाकिस्तान में तरसियल हुआ. ईरानी परे वजीर के लॉजिस्टिक इंतजाम जरिए सहूलतू डी व्यू. हकीकतन ये उबतड़ गति इलाकई इस्तेहाम में अमुन ला जारी कोशिश के नुकसान पहुंचाएं थ. ईरान अमरीका जंगबंदी वेंटिलेटर से आए तेरान असाजे समूर गालन ते तफाक करण बाद फ्री वजे तो असाजी तजवीजन जवाब डेण में जाड़ी वाणी देर कर रो है. उए जवाब न तो दह मिंटन में अची पे सकया. ईरान जो नयू तजवीजू चरियाब वारियों कें भी सूरत में कबूल न कंदी. अमरीकी सदर ट्रंप अमरीकी टीवी के इंटरव्यू डनो. सदर ट्रंप चो तो अमरीका जिया ईरान में बतदल पसंद में चरिया मू मौजूद आन. तेहरान से अजा भी मुआदो मुमकिन है. उम्मीद क्या तो ईरान की सुठी क्यादत सामू इंदी. ईरान से मुकम्मल फतह जरूर हासिल कंदी. उन हवाले से को भी दबाव न है. ईरान जंग खत्म थन्दे ही तेल कीमत घटी वेंद. चौदह नुकता की तजवीजन में मौजूद ईरानी अवाम के हक कबूल करण का सिवाय बो रस्तो ना है. ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाग जो एक्स से बयान. मोहम्मद बाकर चयो तो इन मामले में देर अमरीका के टेक डिजन दुखियाई जो सबब बणजंदी. ईरान की एटमी तवनाई के सरबराह मोहम्मद इस्लामी है तो ईरान के यूरेनियम रचावट प्रोग्राम से को भी समझौतो नो. जोहरी टेक्नोलॉजी की गालियों हिस्सो न है. खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस अज शुरू थी रही है. सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमण अफ्तताह कंदो. पेरे मरेले में 10 बसू हलाई वेंद. 5 खैरपुर का सखर ए 5 खैरपुर का रानीपुर रोड से हलंद. खैरपुर बस टर्मिनल से इंतजाम मुकम्मल. सीनियर वजीर शर्जील मेमण एमएलए नफीसा शाह से गजी अफ्तताह कंदो. सूबाई वजीर जा मेहताब देर ते कातलाने हमले केस में शहरियार शर पुट सुमैद देर की अदालत में पेश. अगुणो एमपीए शहरियार शर ए जहांगीर शर सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने बाद सिविल कोर्ट में पेश थे. शहरियार शर चवे तो फर्द जुर्म लागू थी चुको है. असां के अदलिया ते मुकम्मल एतमाद ए इंसाफ जरूर मिलंदो. शाहपुर शाकर में अणियतल नौजवान जो शाक में लाश हत. अस्पताल में मुनस नौजर साहब गुठान पैनी मदद पान तहत पान लाश अस्पताल मुंतकिल कयो. आई नादरीन खैरपुर भरसा चोर छह थंबन में 11,000 वोल्ट जो तारू चोरी करे व्या. केतरी गोठन की बिजली बंद. गोठान जो चवण है तो बिजली बंद होने सबब जिंदगी तकलीफ में गुजरे पई. सेपको इंतजामिया नोटिस वठे बिजली बहाल कराए.
5: सोलर ए बैटरी ते डायरेक्ट हले और बाकी तमाम पखन के मुकाबले में ये जबरदस्त हवा. रॉयल इन्वर्टर फैंस साथ जिंदगी भर का.
6: सन क्रॉप ग्रुप का डायमंड हाइब्रिड राइस सीड किसान की उम्मीद खुशहाली की नवीद.
7: चेरी है कूलर जिसकी एयर थ्रो में है दम. आइस बॉक्स ठंडक बढ़ाए गर्मा गर्मी दूर भगाए और बिल भी आए कम. चेरी एयर कूलर कूलर्स हर दम.
6: पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पैदावार और
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
8: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
9: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी. मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस. चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम. लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
0: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट यू बाय
2: बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का।
10: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
11: अवांजे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
10: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
11: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
10: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
11: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
10: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
11: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
10: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
11: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
10: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
11: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
10: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
11: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
10: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़।

0: It's 11:15 a.m.
1: This time chat is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: Har din, har peher, zindagi ki leher, GFM 88 Network, Sindh ki awaaz. और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनालिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप कि जी जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं, बिल्कुल टिप टॉप सर कूल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं, जहाँ जहाँ भी मौजूद हैं।

बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरी पूरी तैयार हैं पूरी पूरी एक बजे तक। आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है जो कि आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 पीएम आपका और मेरा साथ रहता है और मेरा खूबसूरती भरा खूबसूरत सा साथ जो कि आज भी जारी और सारी रहेगा पूरे पूरे एक बजे तक। प्रोग्राम में हमेशा की तरह अगर हम वक्त की बात करते हैं तो 11:15 पाकिस्तान का म्यारी वक्त है, आप तमाम तो लोगों की घड़ियों में बज रहा है और इसके अलावा वो लोग जो कि इस वक्त हमें ड्राइविंग करते वक्त सुन रहे हैं, चाहे आप बस में हैं, ट्रक में हैं, रिक्शे में हैं, कार में हैं, बाइक में हैं, जिस पे भी जहां भी जा रहे हैं आपको कहेंगे हैव अ सेफ सेफ जर्नी। बट लद्दनावर अपनी गाड़ी और अपने गुस्से की स्पीड को हमेशा अपने कंट्रोल में रखिए, ड्राइव कीजिए बिल्कुल सेफली। बफल जी खुदा खैरियत मौजूद और तवक्कुल खुदा खैरियत मतलूब। तैयार है वो तमाम दो लोग जिन लोगों की आज सालगिरह है, उनको कहेंगे मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, हैव अ बिट टू यूज़। के अलावा वो लोग जो कि बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून और वो लोग जो कि लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ नहीं कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते ही प्यार। इसके अलावा मेरी आवाज़ जिन जिन गलियों और शबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों दरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है। तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बेगम अहलन वसहलन मरहबा बखैर आगले जी आया नू सब जसमल्ला बोंजोर चाओ नीहाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी।

प्रोग्राम में हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को, सुनाने को, समझने को, समझाने को, सीखने को, सिखाने को, बोलने को, बुलवाने को, सारी बातें करेंगे जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम में प्रोग्राम का पहला गाना, और इस पहले गाने के साथ ही आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड।

ओल्ड सॉन्ग एंड सॉन्ग के साथ साथ आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं जी प्रोग्राम में. तीन तरीके का कार्ड से आप लोग मुझे सिंपली मैसेज कर सकते हैं. सिंपली मैसेज करने के लिए अपना मोबाइल उठाइए, राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए, SKR टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, मैसेज टाइप कीजिए, उसको सेंड कीजिए 888 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है FM88GA सक्कर के पेज के ऊपर. आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट पहली जिंदगी गुलजार है कि उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं. इसके साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं. कॉल करने के लिए हमारा लाइव कॉलिंग नंबर है G03000113488. इसके ऊपर कॉल करेंगे आप लोग. सो कॉल करने के बाद मुझे ज्वाइन करेंगे. दो अदद सेगमेंट होते हैं हमारे, जिसमें से पहला सेगमेंट जो कि हमारा होता है सुर लगाओ गाना सुनाओ. सुर लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें आप लोग एक अदद गाना सुना के वो गाना उसी टाइम पे प्ले करवा सकते हैं. सो गाना प्ले करेंगे और जो गाना आप गाएंगे वो गाना हम प्ले करेंगे. एंड वो गाना कोई भी हो सकता है. मेक श्योर इस बात का ध्यान रखते हुए कि कोई हम यहाँ पे रोना धोना नहीं डालेंगे, तो इसलिए हम रोने धोने वाले गाने भी नहीं गाएंगे ना ही प्ले करेंगे. ठीक है. जो भी गाना आप लोग सुनाएं वो गाना अच्छा होना चाहिए और वो गाना इतना अच्छा होना चाहिए कि या सुन के हमारी सुबह खूबसूरत हो जाए, मेरी भी और मेरे सुनने वालों की भी. अच्छा, इसके साथ से जो हमारा अगला सेगमेंट होता है दैट इज बोलो तो माने. बोलो तो माने में बेसिकली हम लोग करते ये हैं कि एक अदद टंग ट्विस्टर हमारे पास होता है मौजूद, जो कि मैं आपको बताती हूँ. और वो टंग ट्विस्टर उस सेगमेंट में आप लोग कह के दिखा रहे होते हैं. और वो टंग ट्विस्टर जो बंदा ज्यादा ज्यादा सही सही बार बार लगातार कह देगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को. ठीक है जी, तो ये कुछ होता है यहाँ पे और आज भी होगा.

0: भी तो मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
3: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
2: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी,
3: ऐं गायनोकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब,
2: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
3: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
2: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़द नोतकारी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230। कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: जो कहते हैं आरजे रुखसार, आपका और मेरा साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है जी। और हमारा सेगमेंट है सुन लगाओ गाना सुनाओ, जिसमें हम आप लोगों की लाइव कॉल्स को रिसीव कर रहे हैं। सो 03000113488 और साथ साथ बहुत सारे कमेंट्स आप लोगों के मुझे रिसीव हो चुके हैं, एंड कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ भी मूव करेंगे जी। और 8881 पे सिंपली आप लोग मुझे मैसेजेस सेंड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा पेज जिसके ऊपर पोस्ट आपको नजर आती है उसके नीचे कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं। इस्मा किशोर, आपके मैं कमेंट्स ऑफ़ रीड कर रही हूँ, यकीन करें मुझे बड़ी बड़ी हंसी आ रही है, इतनी छोटी छोटी चीजों को आप लोग नोटिस करते हैं, वेरी बैड। अच्छा, कॉलर रिसीव करने जा रही हूँ फर्स्ट शो की, सो चेक करेंगे जी कौन है कहाँ से। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से
1: जी? मैं वकार जतोई तीर से इलाका ना रहे, आपका शो सुन रहे हैं। जिंदगी गुलजार है,
0: जिंदगी गुलजार है, ओके। और जब भी आपको कोई ये कहता नजर आए ना कि जिंदगी अच्छी नहीं गुजर रही, जिंदगी सही नहीं गुजर रही, जिंदगी अजाब है, आपने वहाँ पे उसको कहना है जिंदगी गुलजार है।
1: जिंदगी हर वक्त गुलजार है और जिंदगी का मकसद है खुश रहना।
0: हाँ, जिंदगी का मकसद है खुश रहना, वेरी वेल सेड। अच्छा ये बताइए,
1: ओके,
0: गाना सुनाइए।
1: गाना सुनाएंगे हम आपको, पर हमें गाना कोई हफा दिल वाला सुनाओ, साया भी साथ जब छोड़ जाए।
0: ये तन्हाई वाले गाने नहीं सुनाने ना हमें इस सेगमेंट।
1: ओके ओके, दो भला है ना जो बुधरा है मंजूर सकिरानी, जो लगे तो खड़ाई दे सिर तो इश्क में वो दिल भर।
0: चले ये वाला सुनाते हैं।
1: ओके, मुझे बटे दोस्तरा भी आने युवक जितने अब्दुल जब्बार रुखसार के सलाम मौला खुश रखे। कॉल भी नथा करो अॼुकल्ह।
0: कॉल भी नथा करो, किसकी कॉल उठाई मैंने? आपकी?
1: मैं हाणे त पहिरियां, पर शाम वारे प्रोग्राम में बि वॾा माण्हू अॻ में ई हुयो, पर आया
0: बस क्या करें, कॉल करने वाले बहुत सारे लोग हो जाते हैं ना, जब रश ज्यादा हो जाता है ना तो फिर कॉल मुश्किल से लग पाती है।
1: वैसे आप आरजे इतनी अनमोल है, इसलिए आरजे बहुत ऐसी हो, इतना ज्यादा है ना आपके।
0: हाँ बस यही बात है ना, मैं भी तो यही कहती हूँ आप लोगों को।
1: हाँ तो आप जैसा कोई हो नहीं सकता, हम जैसा कोई सुनने वाला नहीं है, तो कैसे?
0: बिल्कुल सही है, मैं एग्री करूंगी आपकी बात से। क्या खूबसूरत बात कही है कि मेरे जैसा कोई प्रोग्राम करने वाला नहीं है, आपके जैसा कोई सुनने वाला नहीं है, वाओ।
1: ऐसे हम आपके जो है ना खास लिसनर है सपा घाटी।
0: हाँ जी बिल्कुल, और ये आपका गाना आ रहा है, सुनिए एंजॉय कीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।
1: ओके
0: ओके, अल्लाह हाफिज। साथ साथ कॉमेंट्स को इंटरटेन करें क्या, चले करते हैं। इस्मा किशोर कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टू यू एज वेल। नजीर खोसो सोबरपुर बलूचिस्तान से हमें सुन रहे हैं। मोहम्मद साले लगारी हमें सुन रहे हैं। नियाज हुसैन मलिक हमें सुन रहे हैं। इसके अलावा जी इस्मा किशोर बहना, आज अगर मेरी कॉल अटेंड हो तो मैं ऊपर जाऊं, वरना बहुत गर्मी है। लगा ले, जब लग जाए ना एकदम, तभी आपने ना दौड़े लगानी है छत की और ऊपर चले जाना है। सही है, ऐसे कर लें।

0: रखे हुए और मैं हारा हुआ मेरे जज्बात का एहतराम करो, मेरे जज्बात का एहतराम करो। शाम का एक पहर मेरे नाम करो, हो सके तो मेरा एक काम करो।
1: ओके, किसी को डेडिकेट करना है?
0: किसी को?
1: ये सवाल मैं पूछना छोड़ दूँ आपसे?
0: अच्छी बात है,
1: चलो जबरदस्त। हाँ जी,
0: अच्छा मैं कुछ कहना चाहता हूँ। वो थैंक्स कहना था मिसेज अली को,
1: हाँ,
0: जो हमेशा मुझे अप्रिशिएट करती हैं और उनकी वजह से ही मैं जो है ना छत पे आना जो है ना ज्यादा शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो सही है, कुछ ना कुछ तो किसी न किसी को तो फायदा होता है, अच्छा लगता है।
1: बिल्कुल ऐसा ही है। और सर दर्द ने भी की थी वैसे आपकी तारीफ?
0: हाँ हाँ, सर दर्द के लिए वो हमेशा मेरे लिए दो लाइनें लेकर आती हैं, आज मैं उनके लिए दो लाइनें लेकर आया हूँ।
1: हाँ जी, इरशाद।
0: किस कदर शुक्रिया अदा करूं आपका, किस कदर शुक्रिया अदा करूं आपका, अल्फाज नहीं मिलते। आवाज मेरी इतनी खूबसूरत ना होती जो आप जैसे कदरदान ना होते।
1: आ हा हा हा हा हा, क्या बात है। वैसे ये मेरे लिए भी होना चाहिए।
0: आप तो सबसे पहले है ना।
1: हाँ जी बिल्कुल,
0: सबसे पहले तो आपके पास ही आए, उसके बाद ये देने हमारी जिंदगी में आई और इन्होंने जो है ना इतना अप्रिशिएट किया तो अच्छा लगता है। अल्लाह करे सब खुश रहे।
1: ओके जी, आमीन सुमा आमीन। थैंक यू, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और ये रहा आपका गाना। अच्छा, इस गाने के शुरू में ये जो काफी सारा म्यूजिक ऐड कर दिया है ना, यहाँ से

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोज़ानो सुबुह 9:05 ते सिर्फ़ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: मुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, खुदा करे ये खुशी जिसको बार बार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले।
1: ओके, इस गाने का टाइटल क्या है?
0: ये लाइट ऑफ सर का गाना है और फिल्म का नाम तो याद नहीं है मुझे।
1: नहीं, द कलर का। ओके,
0: और दो लाइनें प्यार की आपके लिए।

0: ठीक है,
1: जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, जिंदगी में बार बार सहारा नहीं मिलता, हार हार कर जान से प्यारा नहीं मिलता, है जो पास उसे संभाल के रखना, है जो पास उसे संभाल कर रखना, खोकर वो कभी दोबारा नहीं मिलता। मौला आपको सलामत रखे, सब सुनने वालों को अली मोहम्मद बंबरों की तरफ से बहुत सलाम और दुआएं।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और मैं गाना साथ साथ आपका सर्च कर रही हूँ, और ये नाहिद अख्तर का तो नहीं, लेकिन ये नूर जहाँ का आ रहा है, और कोई सैड सॉन्ग ही आ रहा है। चलो मैं इसको दोबारा सर्च करती हूँ, तब तक हम एक और कॉल लेते हैं, एंड 03000113488 इसके ऊपर कॉल कर रहे हैं आप लोग, एंड हम आप लोगों की कॉल्स तो लेंगे, लेकिन उससे पहले एक सॉन्ग प्ले करेंगे, एंड एक और सॉन्ग इज एक और सॉन्ग चेक करें जरा। नेक्स्ट सॉन्ग इज वेरी वेरी ब्यूटिफुल, सुनेंगे, इंजॉय करेंगे, आगे चलेंगे।

Okay, it's a beautiful song. और आज का टंग ट्विस्टर कुछ इस तरीके से है कि आप लोग मुझे कह के दिखाएंगे, काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली. ठीक है, ये कहना है, जल्दी जल्दी कहना है, इसकी प्रैक्टिस करना शुरू करें. काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली. मेरे ख्याल से आज का टंग ट्विस्टर बोलने में बहुत ज्यादा इजी है ना. तो अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करें. एंड हियर कम्स ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय बिलाल सईद. इसको सुनेंगे, सुनते सुनते जाएंगे न्यूज ब्रेक फॉलोड बाय कमर्शियल ब्रेक. दोनों के बाद वापस आएंगे. स्टे ट्यून्ड.

पाकिस्तान ईरानी जहाजन की मौजूदगी बाबत सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के गुमराह कंदड़ करार दी छो पर डी खाते मौजूद इस्लामाबाद गारन लाए अमरीका ईरान जा केतराई जहाज पाकिस्तान पौता जन जो मकसद सफारती अमले सिक्योरिटी टीम ने गारन वाले अमल के आसान बनाण हो कुछ जहाज ए अमलो गालन के बे दौर के नजर में रखते पाकिस्तान में मौजूद रहा बो दौर अजा बाजाबा शुरू ना थो पर आला सतह सफारती रबता जारी है ईरानी परडेही वजीर जो पाकिस्तानी दौरे में मौजूद इंतजामी ए लॉजिस्टिक सहूलत जरिए मुमकिन थो हो पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज भी जंगबंदी दौरान आयो हो जो कें भी किस्म की फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती कदम से ताल्लुक ना ख्याल के बदल बयानिए जो मकसद इलाकई इस्तेहाम ए अमन वाली कोशिशों के नुकसान पहुंचाण है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क्यादत के बेईमान ए बार बार मौकफ तब्दील करण करार दी छो तेहरान से रिजाल यूरेनियम कड़न की इजाजत देने वाले मुआदे से भी अटन जो इल्जाम लगाए छो व्हाइट हाउस में सहाफिन से गाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान अमरीका जंगबंदी वेंटिलेटर से है तेहरान गालन से इतफाक कर बाद फ्री वजे तो कें सूरत में कबूल न कदी तेहरान से अजा भी मुआदे जहा इम्कान मौजूद आन ईरानी अवाम के हकन के न मन जो नतीजो नाकामी का सिवाय कुछ भी न हों ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कारीबाद ईरान एटमी प्रोग्राम से ठा न कंदो तेहरान के डिनल 14 तजवीजन जो बो को भी मुतबादल ना है तेहरान अमरीकी देर की कीमत टैक्स ईंदड़ अमरीकी शहर के भरनी पवी लबनान में गर्द इसराइली लबनान में कर्द इसराइली फौज जो हमलो छह जणा शहीद सत जख्मी इसराइली फौज सूर के शहर कफिर दोनिन में घर से हमलो कयो घर मिट्टी के ढेर में तब्दील थी पयो केपीके के इलाके लखी मरव के सराय नौरंग में धमाकू सत जणा शहीद सत्रह का वधिक जख्मी शहीदन में ब पुलिस अहलकार भी शामिल अस्पताल इंतजामिया मूजिब धमाके बाद सत जणन जा लाश अस्पताल आंदा व्या आहिनि पुलिस मूजिब धमाके में ट्रैफिक पुलिस जा ब अहलकार भी शहीद थिया आहिनि वधीक जांच जारी आहे।

वफ़ाक ऐं सिंध हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। वफ़ाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि। 28 तरमीम अची वई या 29 सिंध खे कंहिं बि सूरत में विरिहाइण न ॾींदासीं। खैरपुर में मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर सदीरना मेमुर चयो त जीडीए खे फाल करणु सुठी ॻाल्हि आहे, मुक़ाबले जो माहौल ठहंदो, सियासी मुक़ाबले सां जमहूरियत मज़बूत थींदी ऐं चूंडूं वधीक शफ़ाफ़ बणजंदियूं।

कराची शहर के मुख्य ब्लॉक में टे जणा कतल एक जख्मी गुलशन मेमार भरसा साहिब खान पुट मुसाफिर के कतल किया वो बल्दियावार इलाके में नॉर्थर्न बाईपास से एलपीजी गैस कंपनी वेझो फायरिंग नौजवान गुलाबपुट यूसुफ कतल न्यू सबरी मंडी वेझो हिंगोरा गोट वट फायरिंग में सईदुल्ला कतल जो एक जख्मी भी थोड़ा।

0: सुबाई वजीर जहां मेहताब बेरत कातलाने हमले केस में शहरियार शहर पुट समेत देर की अदालत में पेश अगुणो एमपीए शहरियार शहर जहांगीर शहर सुप्रीम कोर्ट में जमानत मिलने बाद सिविल कोर्ट में पेश थिया। शहरियार शहर चयो है फर्द जुर्म लागू थी चुको है असंख्य दरिया से मुकम्मल एतमाद इंसाफ जरूर मिल।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी।

0: चंद जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हय में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03132525786
2: जी हा 2315525786
3: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आज ये रुखसार आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है. और इसके अलावा जी ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं हमारा एक अलग सेगमेंट जो कि हम शुरू करने वाले हैं दैट इज बोलो तो माने. बोलो तो माने में हम करेंगे ये कि एक अलग टंग ट्विस्टर आपसे सुनेंगे जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ. तो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो है काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली. काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली ये कहना है आपने. ये कहेंगे तो बहुत अच्छा होगा. यानी कि जो बंदा अच्छा अच्छा सही सही बोलेगा वो विन कर जाएगा सेगमेंट को. तो देखते हैं कि आज कौन अच्छा अच्छा टंग ट्विस्टर कहके दिखाता है. हम कॉल्स लेंगे आप लोगों की 03000113488. अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग कॉल पे नहीं आना चाहते वो हमें सिंपली मैसेज कर सकते हैं 8881 पे. तो अपना मोबाइल उठाइए राइट मैसेज ऑप्शन में जाइए SKR टाइप कीजिए स्पेस दीजिए मैसेज टाइप कीजिए सेंड कीजिए 8881 पे. कमेंट करने के लिए हमारा फेसबुक पेज है FM88GA सक्कर. इस पेज के ऊपर आने के बाद आपको मिलती है पोस्ट जिंदगी गुलजार है की. उसके नीचे आप लोग कमेंट्स को ड्रॉप कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं हमें.

0: साथ साथ कुछ मैसेजेस को इंटरटेन करते हैं जो कि मुझे रिसीव हुए हैं बहुत सारे। हमें मैसेज किया है सुमेरा ने, सुमेरा कहते हैं हाउ आर यू, मैं अच्छी हूँ, सुमेरा आप कैसी हैं? अच्छा, इसके अलावा हमें मैसेज आया है राणा ताहिर भाई फ्रॉम मीरपुर खास, कहते हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम सिस्टर रुखसार, जिंदगी गुलजार है, हमको FM 88 से प्यार है, पाक आर्मी को सलाम। अरे वाह, ये तो शेर बन गया, वाओ। अच्छा, इसके अलावा तालुका सिंदरी से हैदर बख्श शर हमें सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच हैदर बख्श शर। और कॉलर मौजूद है लाइन पे मेरे साथ, कॉलर लेते हैं। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम।
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैम सागर बात कर रहा हूँ।
0: सागर भाई कैसे, ठीक ठाक?
1: खैरियत है, ठीक ठाक। क्या खैर तो है मैम, 5 मिनट पूरे हो गए कॉल चल रही है।
0: 5 मिनट पूरे हो गए कॉल चल रही है, अच्छा 5 मिनट से कॉल चल रही है, ये देखे ना कि लग गई आपकी, बैलेंस तो नहीं
1: लग गई,
0: बैलेंस तो नहीं खर्च हुआ।
1: कर्जा लिया हुआ था मैम, कर्जा लिया हुआ था, कर्जा ही मुक गया।
0: अच्छा, कर्जा लिया हुआ था, कर्जा
1: उतर गया, भी मुकने वाला है।
0: अच्छा ये बात है, कर्जा भी खत्म होने वाला है, लिया हुआ तो फिर उतारेंगे कैसे?
1: बस लिया मैंने तो नहीं उतारूंगा।
0: चलें जबरदस्त, इसी बात पे फिर टंग टू स्ट्रिक कहके दिखा दें।
1: गाने का सेगमेंट खत्म हो गया,
0: गाने का सेगमेंट तो खत्म हो गया।
1: आए आए आए
0: आए,
1: मार डाला।
0: आज टंग ट्विस्टर कहके दिखाएं सुर में,
1: सुर में,
0: हाँ सुर में,
1: सुर में तो सुलो गाया जाएगा।
0: नहीं, गाना गाते हुए, मतलब गाते हुए टंग ट्विस्टर बोल सकते हैं आप?
1: जी जी, एक बार रिपीट करें टंग ट्विस्टर क्या है।
0: चलें आज ही हम नई चीज ट्राई करते हैं। काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली,
1: काशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली,
0: हाँ इसको गाते हुए कहें।
1: काशान ने काल कंघे के कोने में काली कंघी निकाली, काशान ने कमरे के कोने में
0: वेरी वेरी वेरी गुड, वेरी वेल डन, क्या बात है।
1: मैंने पहले कहा था मैम मुझे गाने का बहुत शौक है,
0: बस आज के बाद ना हम आपसे टंग ट्विस्टर गाने में ही सुना करेंगे,
1: सुना दिया करूंगा। असल में क्या है कि मैंने टंग ट्विस्टर पहले सुना नहीं, अगर तो मैं पक्का करता तो और ही सुर में गाता मैम।
0: चलिए जबरदस्त, डेली जो है ना हम आपसे सुर में सुना करेंगे, डन है?
1: डन डन डन।
0: ओके, और कुछ कहेंगे?
1: नहीं मैम, बस बहुत हंसी आ गई है, बहुत
0: ओके जी, बहुत सारा ख्याल रखें अपना, अल्लाह हाफिज। और देखते हैं कि अब कौन इसको सुर में गे पाता है। 03000 11 3 4 88

0: ओके जी, एक और कॉल लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कौन है कहाँ से। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रही हैं?
1: वालेकुम, असद बात कर रहा हूँ।
0: असद बात कर रहे हैं? असद, में मुझे ना आप कभी कभार ऐसा लगता है कि जैसे आपकी एकदम से कॉल आती है ना, मैं कहती हूँ कौन बात कर रही है। ऐसा इत्तेफाक कभी किसी को कॉल करते हुए हुआ है आपको? होता रहता है। चलें, जबरदस्त। अच्छा, टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
1: वो भी सुनाए।
0: सुना दे फिर, बोल दे।
1: आशान ने कमरे के कोने से काली कंघी निकाल दी। आशान ने कमरे के कोने से काली कंघी निकाल दी। आशान ने कमरे में काली कोने से काली कंघी निकाल दी।
0: नो नो नो, आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली।
1: आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली। आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली। आशान ने कमरे में कोने में काली कंघी निकाली। आशान ने कमरे के कोने में काली कंघी निकाली।
0: और कुछ कहेंगे?
1: बाजी सॉन्ग सुना दे अच्छा सा कोई।
0: कौन सा?
1: जो भी है वो जो पाकिस्तान कौंटर जो है सुना दे।
0: चले मैं आती हूँ आपको। थैंक यू सो मच, बहुत सारा ख्याल रखें अपना। अल्लाह हाफिज़।

0: Okay, one more next caller. Hello.
1: Hello, assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam. Kaun baat kar rahe hain, kahan se? Distortion aa raha hai aapki awaaz mein. Kahin aisi jagah pe chal jaye jahan proper signal ho. Sorry, main bilkul nahi samajh pa rahi. I can't understand. Hello. Okay, जी तो kindly ऐसी जगह पे चले जाएं जहाँ पे proper signal हो, वहाँ जाके call करें, जो भी आप भाई हैं कि बहन हैं. अभी तक मुझे समझ भी नहीं आया था. खैर, next caller. Hello.
2: वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन किधर से?
2: जी हैदरबाग की बात कर रहा हूँ.
0: हैदरबाग, क्या हाल है भाई?
2: अल्लाह का काम है. आप सुनाइए.
0: अच्छी हूँ हमेशा की तरह. और भाई मेरे, मुझे ये बताइए, टंग ट्विस्टर सुनाए भाई?
2: जी जी सुना है.
0: तो बोले ना.
2: अच्छा, मैं कमरे के.
0: हाँ जी, बोले बोले. हैदर भाई की कॉल ड्रॉप हो गई. भाई हो गए भाई, हैदर भाई. सब बहनों के भाई. अच्छा, इसके अलावा जी मेरे ख्याल से मुझे मूव करना चाहिए एक अदर सॉन्ग की तरफ. एंड मैं कौन सा प्ले करूं इसमें से?

कि जी ये हम कुछ प्ले करना चाह रहे हैं, प्ले कुछ और हो रहा है, बट नो इश्यू नो इश्यू, हम प्ले करेंगे एक और ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड हियर कम्स द सॉन्ग बाय हसन एंड रोशन. सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, आगे चलते हैं.

0: It's 12:30 PM. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream, जो deep clean करे और दे 4 गुना brightness, चमक ऐसी diamond skin जैसी. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवा दवा, यह है मोहब्बतो यकजहती का पैगाम यहाँ वहाँ. GFM 88 Network, सिंध की आवाज.
3: This program is brought to you by
4: Bank Al Habib, रिश्ता भरोसे का.
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
6: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
7: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
6: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
7: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392.
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
6: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं. डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
6: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली.

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

ओके जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार है, आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का. और इसके अलावा जी हमारा सेगमेंट जो अभी तकरीबन कुछ देर पहले हुआ, दैट इज बोलो तो माने. तो बोलो तो माने में किसने टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा बोला है वो हम बताएंगे आपको. उससे पहले कुछ कमेंट्स को इंक्लूड करेंगे. नियाज हुसैन मलक हमें सुन रहे हैं, इकबाल लाशारी हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से, अब्दुल रज्जाक हमें सुन रहे हैं मीरपुर खास से और कहते हैं शो जबरदस्त है, आगे क्वेश्चन मार्क लगाया है. मुझे क्या पता, आप बताएंगे ना मुझे कि जबरदस्त है या नहीं. इसके अलावा हर्ष चंद्र राय कोहली हमें सुन रहे हैं, जिंदगी में हमेशा ऐसे इंसान बने जो किसी के चेहरे की मुस्कुराहट की वजह बने, क्योंकि दिल जीतने का हुनर हर किसी को नसीब नहीं होता. वाओ, वेरी वेल सेड.

के साथ एक और सॉन्ग मेरी प्लेलिस्ट में मौजूद है एंड द सॉन्ग इज बाय जिनकी शादी उनकी शादी ओएसटी सॉन्ग सुनेंगे एंजॉय करेंगे आज चलेंगे आप सुन रहे हैं जिंदगी गुजार है

छा अमा जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहिरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो।

0: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
1: छा अव्हां जो चेहरो बेजान ऐं डल लॻे थो? हाणे वक़्तु आहे चमकण जो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सां कुदरती जुज़नि सां तयार कयल, जेका ॾे कुदरती निखार, साफ, नरम ऐं रोशन चेहरो। पहिरें ई इस्तेमाल में फ़र्क़ महसूस करियो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, तव्हां बि चमकायो पंहिंजो चेहरो जीअं हुजे हीरो। हैमे डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
3: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आगे इस मां किशोर कमेंट कर रहे हैं, तेरा होकर देख लिया है मैंने, रोकर देख लिया है। इश्क में पागल होने से कुछ नहीं होता, मैंने पागल होकर देख लिया है। वेरी गुड, मतलब अकल आ गई है। ओके, वेरी नाइस। ओके जी, लास्ट एंड लकी कॉलर्स में चेक करते हैं आज किसकी कॉल लगती है। हेलो,
1: हेलो, अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम, कौन कहाँ से?
1: जी
0: जी, खैरियत है? कौन बात कर रहे हैं भाई, नाम बताइएगा।
1: गुलाम लगारी से।
0: गुलाम लगारी से कौन?
1: गाजी खान रिंद।
0: ओके जी, गाजी खान रिंद भाई, कैसे? ठीक ठाक,
1: अल्लाह का शुक्र है भाई। आप सुनाओ, क्या कह रहे थे?
0: जी मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताएं कि लास्ट लकी कॉलर है, आज की अच्छी बात क्या है?
1: अच्छी बात है, हर एक के साथ एकती करो, वालदेन का खिदमत करो, वालदेन का ख्याल करो, और छोटे बच्चों के ख्याल करो, ये अच्छी बात है। और बेटी ये काम किया करो, अल्लाह से डरो, अल्लाह का इबादत करो, ये अच्छी बात है।
0: ओके ठीक है, थैंक यू सो मच।
1: और फिर कह रहे थे नंबर ही नहीं लगता है, बड़ी मुश्किल से लगा
0: कॉल, बड़ी मुश्किल से लगती है। बस क्या रश है ना हमारी शो में, तो इस वजह से सबकी यही शिकायत है कि कॉल नहीं लगती।
1: हाँ, कॉल नहीं लगती।
0: हाँ जी
1: बिल्कुल,
0: चले हमने बहुत सारा ख्याल रखे। मैं प्ले कर रही हूँ एक अदद गाना।

गाना है और गाना ऑलमोस्ट हमारा पूरा खत्म हो चुका है एंड नेक्स्ट एंड लास्ट सॉन्ग की तरफ हम मूव करेंगे एंड द नेक्स्ट एंड लास्ट सॉन्ग जो कि मैं प्ले करूंगी आप लोगों के लिए और इसको हम सुनेंगे इंजॉय करेंगे और इसी के साथ प्रोग्राम को रैप अप करेंगे. सो इसका मतलब ये है कि आपसे मेरी चिटचैट होगी अब कल ऑन सेम टाइम सेम चैनल सेम शो विद द सेम आरजे. सुनना मत भूलिएगा जिंदगी गुजार है अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी और पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लवसुम पर थिंक हाई. सो दिस इज मी आर जे रुखसार साइंस आउट. टेक केयर गुड बाय अमानी खुदा अल्लाह हाफिज़.

0: अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ्फुज़ दे, कोजिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी।
1: It's 1 p.m. This time check is brought to you by
2: Bankal Habib, Rishta Bharose Ka.
3: अब आप सुनेंगे GAFM Network पर KTN News।

सीबीसी न्यूज की रिपोर्ट के गुमराह कन्ड़ करार डी छो बड़े खाते मौजूद इस्लामाबाद गारन लाए अमरीका ईरान जो केतरा ही जहाज पाकिस्तान पौता जन जो मकसद सफारती अमले और सिक्योरिटी टीम ने गाल अमल के आसान बनाने हो कुछ जहाज ए अमलो गाल बे दौर के नजर में रखन्दे पाकिस्तान में ही मौजूद रहा बो दौर अजा बाजाबता शुरू ना थो पर आला सतह सफारती रबता जारी है ईरानी पटेई वजीर जो पाकिस्तानी दौरो मौजूदा इंतजामी ए लॉजिस्टिक सहूलतन जरिए मुमकिन थो हो पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज भी जंगबंदी दौरान आयो हो जैसे कें भी किस्म की फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती कंदबन से ताल्लुक ना ख्याल बदल बयानी जो मकसद इलाकई इस्तेहकाम अमन वारी कोशिश के नुकसान पहुंचाना है।

अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प ईरानी क्यादत के बेमान ए बार बार मौकफ तब्दील कर करार दई छो। तेहरान से रचल यूरेनियम करण की इजाजत देने वाले मुआहदे तब पोते अटन जो इल्जाम लगाए छो। व्हाइट हाउस में सहाफिन से गाले डोनाल्ड ट्रम्प ईरान अमरीका जंगपति वेंटिलेटर से है। तेहरान गाल इतफाक करण बाद फ्री वे तो कें भी सूरत में कबूल न कहरान से अना भी मुआहदे जा इम्कान मौजूद आया।

0: ईरानी अवाम जे अगन के न मञण जो नतीजो नाकामी का सिवाय कुछ भी न हुंदो। ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालीबाग चयो त ईरान एटमी प्रोग्राम ते छा न कंदो। तेहरान जे ॾिनल 14 तजवीज़न जो बि को बि मुतबादल न आहे। तेहरान अमरीकी देर जी क़ीमत टैक्स ॾींदड़ अमरीकी शहरनि खे भरणी पवंदी। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ जी सदारत हेठि मुल्की एक्सपोर्ट बाबति इजलास। वज़ीर आज़म नंढे ऐं विचोले कारोबार सनअतनि खे सहूलियतूं फराहम करण बाबति हिकमत ऐं अमली जोड़ण जी हिदायत। शहबाज़ शरीफ़ चयो त एक्सपोर्ट ते वधल सनअत ऐं मुल्की तरक़ी जा हदफ़ हासिल करण अंतर आहे। हुकूमत जो समूरो ध्यानु एक्सपोर्ट में वाध ऐं सनअतनि खे सहूलियतूं ॾियण ते आहे। एक्सपोर्ट में वाध जो कारण बणजंदड़ नवनि कारोबारनि ऐं सनअतनि खे हथी ॾियण लाइ रिथाबंदी कई वञे।
1: सब एक पेज पर हैं। फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, फुल फॉर्म, सब एक पेज पर है। कोई आपस में कोई डिफरेंस नहीं। ये फॉर्म के हद तक, सोशल मीडिया के हद तक जो है, ये खबरें आ रही होती हैं। आप लोग क्योंकि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें कभी, और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वफाक हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया। आनी नहीं आनी ये पता नहीं है। आप इस मिशन की तकसीम भी लेकर आ गए। सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी, कुछ भी हो जाए, 28वीं आए या 2800 कदमी में आ जाए, सिंध की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है। ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे।
0: वफाक ऐं सिंध हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि। वफाकी हुकूमत ऐं सिंध हुकूमत हिकु पेज ते आहिनि। 28 तरमीम अचे या 29, सिंध खे केर बि ऐं कॾहिं बि विरहाए नथो सघे। खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जे इफ़्ताह वारे तकरीब खे ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इना मेमण चयो त GDA खे फाल करण सुठी ॻाल्हि आहे। सिंध में पीपल्स पार्टी जो केर बि मुक़ाबलो नथो करे सघे। सिंध हुकूमत पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक आहे, सुठो कम करे रही आहे। सुठे कम बावजूद पीपल्स पार्टीअ ते तनक़ीद कई पई वञे। सोशल मीडिया ते मुहिम हलाई पई वञे। शर्जील इना मेमण खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्ताह कयो। खैरपुर KPK जे इलाके लखी मिरवत जे सराय नोरंग में धमाको, 7 ॼणा शहीद, 17 खां वधीक ज़ख़्मी। शहीदनि में ॿ पुलिस अहलकार बि शामिल। इस्पताल इंतज़ामिया मूजिबि धमाके बाद 57 लाश इस्पताल आंदा विया। पुलिस मूजिबि धमाके में ट्रैफिक पुलिस जा ॿ अहलकार बि शहीद थिया आहिनि। वधीक जांच जारी आहे। आराम ऐं बहादुर 7 जे साने खे 19 साल मुकमल। शहर में रत जी होली खेॾंदड़ कानून जे कटड़े में न आया। सिंध में वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइनि जो बायकॉट, मुख़्तलिफ़ शहरनि में मुज़ाहिरा। कराची, हैदराबाद, सखर, लाड़काणो, नवाबशाह में वकीलनि पारां अदालती कार्रवाइनि जो बायकॉट कयो।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: आप सुन रहे हैं GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय।
5: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जी तरफ़ां पेश कयो वियो।
6: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम।
7: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
8: अवां जे इत्माद के कायम कंदे, अवां जी जरूरत जो ख्याल रखदे।
7: ऑफिस हो जाए या घर या कारोबार, शादी ऐं बिन तकरीबन लाए हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासिल लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
8: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
7: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
8: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
7: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
8: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
7: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छिटूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छिटूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03132525786
1: जी हा 2315-2525-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: आप सुन रहे हैं
4: जी ए एफ एम 88
3: नेटवर्क सिंध की आवाज़।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

क्या बात है जी, बहुत ही ज्यादा शानदार। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी शो। स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। और यहाँ पर आपके सिद्धरा आप लोगों के साथ साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताते जाएंगे, अपने होने का एहसास दिलाते जाएंगे। यानी कि हमें पता होना चाहिए कि अगर जो हमारे लिसनर्स है वो हमें सुन रहे हैं, तो जनाब कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से आप हमें सुन रहे हैं। ओके जी, तो यहाँ पर आप लोगों को बताते चलें कि अगर आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे तो आप क्या तरीकेकार फॉलो करके हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनने वाले हैं। तो आप ऐसा करेंगे, अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और उसे सेंड कीजिए 8821 पर। अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो फेसबुक पर आप जीए लारकाना FM 88.8 के पेज के ऊपर आ जाएंगे। और जीए लारकाना FM 88.8 का पेज अगर आप सर्च करते तो आपको इजीली हमारा पेज मिल जाता है। वहां पर आप आकर क्या करेंगे जी, आप जैसे ही आते हैं पेज पर तो आपको हमारे प्रोग्राम की लाइव पोस्ट मिल जाती है, जिसे आप लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे। तो पोस्ट को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करते जाइए। और इसी के साथ साथ आप लोगों को बताते चलें कि जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, अगर लोग ऐसे जो कि हमें मैसेज भी नहीं कर सकते हैं, कमेंट भी नहीं कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए प्रोग्राम में कॉल्स भी ली जाती हैं। और कॉलिंग वाला जो सेगमेंट होता है वो 2 बजे के बाद स्टार्ट होता है, तो नंबर भी 2 बजे के बाद ही बताया जाएगा। ओके जनाब, तो प्रोग्राम में आप लोगों के साथ खूबसूरती की बातें करेंगे और जानेंगे जरा कि आप लोगों की स्किन क्या चाहती है। ऐसा होता है कई मरतबा कि हम बड़ा जो ना वो इस सोच में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारी स्किन जो है वो ना तो नॉर्मल टाइप है, ना तो सेंसिटिव है, ना ही हमारी स्किन के ऊपर कोई प्रोडक्ट सूट कर पाता है। तो कई मरतबा ऐसा सीन हो जाता है हमारी जिंदगी के अंदर जो हम खुद भी समझते हैं कि भाई हमें क्या करना चाहिए। तो जब आप देखें ना कि आपकी जो स्किन है वो जो है ना उसके ऊपर कोई भी प्रोडक्ट सूट नहीं कर रहा है, आप इसी वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, आपकी स्किन जो है वो ना तो ग्लो में आ रही है, ना तो आपके चेहरे के मसाल खत्म हो रहे हैं, बस आप जो है परेशानी की जानिब जा रहे हैं, तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो है ना उनके बारे में जाना है और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जाना है। तो इस प्रोग्राम में आप लोगों को मैं बताती हूँ कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या ऐसे फायदे हैं जो कि आप लोगों को मिलने वाले हैं, और डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के क्या ऐसे फायदे हैं जो आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो अच्छे तरीके से पहले सुन लिया करें और समझ लिया करें कि कौन से प्रोडक्ट आपने क्यों इस्तेमाल करें, उसके बाद ही आप लोगों ने सोचना है और फैसला करना है कि आपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। तो अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, तो आप लोगों को बताते चलेंगे व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, जैसे कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम आप लोगों के लिए अवेलेबल है, व्हाइट एज ब्यूटी सोप है, व्हाइट एज का विटामिन सी का फेस वॉश है, उसके अलावा व्हाइट एज का जो है ना वो डॉक्टर पिंपल नाम से ट्यूब है जो कि एक्ने के लिए ट्यूब है, आयुर्वेदिक फार्मूले के साथ तैयार शुदा, और व्हाइट एज की लवली क्रीम है, और जनाब उसके साथ साथ व्हाइट एज का हेयर रिमूवल जो है ना वो भी लोशन है जो कि 3 अलग मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद है। उसके साथ साथ अगर हम डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की बात करें तो उसमें आप लोगों को डी स्किन ब्यूटी क्रीम मिल रही है और डी स्किन का फेस वॉश मिल रहा है। ये डी स्किन में 2 प्रोडक्ट्स हैं, बाकी व्हाइट एज के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो इन प्रोडक्ट्स में क्या ऐसी चीजें हैं, क्या ऐसी बातें हैं जो कि आप लोगों को बताने वाली हैं, जिनके ऊपर आप अमल करके अपनी खूबसूरती को बढ़ाएंगे, तो बिल्कुल जी पूरे प्रोग्राम में आप लोगों को मैं बताती रहूंगी और आप जानते रहेंगे। तो यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद रहते जाइएगा और यहाँ पर आप हमें ज्वाइन करते जाइएगा और बताइए कि आप हमें कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है चाचा खालिद जुड़े जो वालेकुम अस्सलाम, आपको वेलकम कहते हैं, लिखते हैं शो इज गोइंग ऑफ व्हाइट एज लवली क्रीम एंटी स्किन क्रीम ऑल प्रोडक्ट्स। बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल करके देखिएगा, एंजॉय करें आप हमारा प्रोग्राम। आदिल हुसैन हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम आदिल हुसैन। हिदायतुल अहमदानी हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम। प्रेमचंद भाई हमें सुन रहे हैं, प्रेमचंद भाई आपको भी वेलकम हो गया। संजय जयपाल हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी। मोहम्मद जमान हमें सुन रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। ओके जी, उसके अलावा है महर इरफान सियाल साहब हमारे साथ, कहते ग्रेट होस्टिंग मैम आरजे एंड ग्रेट प्रोडक्ट्स बाय व्हाइट एज एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। बिल्कुल जी बिल्कुल, कोई शक नहीं इस बात में। तो और नजीर खोसो हमें सुन रहे हैं बलूचिस्तान से, वेलकम जी। और ये है अमानुल्लाह महर भाई, वालेकुम अस्सलाम। और हैं जी, अच्छा याकूब मंगी भाई हमारा शो सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया। चाचा खालिद कहते हैं कि शो का प्रोमो इज वेरी अट्रैक्टिव, सिडो शानदार प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं, व्हाइट एज लवली क्रीम एंटी स्किन क्रीम। हाँ जी बिल्कुल, आप इस्तेमाल करेंगे तो और ज्यादा आपको मजा आएगा। और वरियाम अली जतोई हमारे साथ मौजूद है, चलिए जी आपको भी वेलकम करते हैं। आप ऐसा करें, आप पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, सारे लोग पोस्ट को लाइक और शेयर करें ताकि बहुत सारे लोगों को पता चल सके कि जनाब मार्केट में अब व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आ चुके हैं और आप लोगों ने जो है ना वो अवेलेबल कराने अपने करीबी जनरल स्टोर पर और वहां से जाकर आपने परचेज भी करने हैं। तो जल्दी जल्दी से आप जो है
वो पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए, दोस्तों को मेंशन करते जाइए और मुझे बताइए आप कहाँ से हमें सुन रहे हैं और क्या आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए हैं या अभी तक नहीं। तो मैं यहाँ पर जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानिब जाती हूँ और फिर जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आती हूँ। आपने कहीं नहीं जाना, आप हमारे साथ मौजूद रहिए, सुनते रहिए, एंजॉय कीजिए और हमारे साथ रहिए। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ।

0: It's 1:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Heme Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jekade kudrati nikhar. Saaf, naram, ay roshan chehro. Heme Diamond Glow Bleach Cream.
2: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज.
3: दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय.
4: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो.
5: खूबसूरती का असल राज सिर्फ बी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फार्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेस और दे कुदरती असली ग्लो. बी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
6: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो. मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
7: अव्हां जे इत्मीनान खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे.
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं में
7: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा.
6: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
7: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
6: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं. डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा.
7: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
6: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली.

0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नस्लन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GAFM 88 नेटवर्क ते।
0: अपना शहर, अपना घर, माटली और माटली की आवाज GFM 90.4।

मीरपुर खास मटियारी सक्रम मेहरापुर मातली और जनाब लारकाना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एज एंड डी स्किन ब्यूटी शो। जनाब तो सुनने वाले समातों को वेलकम इन खुश आमदीद कहा जाता है और इसी के साथ साथ अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आप बताएं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, कहां से सुन रहे हैं ये भी बताएं और कौन हमारे साथ है ये भी बताएं। और इसी के साथ साथ अगर आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं जनाब वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स को, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप लोगों ने कौन सा कॉन्टैक्ट जो है ना कॉन्टैक्ट नंबर वो डायल करना है जिसके ऊपर आपको रिस्पांस मिलेगा और आप उन्हें बताएंगे कि आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये अवेलेबल नहीं है। तो उसके लिए आपने बस इतना सा काम करना है कि आपने ये नंबर डायल करना है जो मैं अभी आप लोगों को बताने लगी हूँ। तो नंबर है जनाब 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल कीजिए आप लोगों के करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स ये जल्दी से अवेलेबल हो जाएंगे। इससे ये होगा कि भाई आप लोगों ने अब ऐसा नहीं सोचना कि हम कहाँ से जाकर परचेज करेंगे, हमारे एरिया में तो मिलते नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे, ये वाले जो ऑप्शन है ना ये आप लोगों की जिंदगी से खत्म हो जाएंगे। तो बस आप जल्दी से अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहाँ से जाकर परचेज करते जाइए। ओके जी, साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बताया जाता है कि जब आप व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों की खूबसूरती किस तरह से बढ़ती है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो बात का आगाज करेंगे तो यहाँ से करेंगे कि आप लोगों को बताया जाए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम के बारे में। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, आप लोगों को पता है कि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है ये एलोवेरा और एवोकाडो से तैयार शुदा है और व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जल्द की खूबसूरती और निखार के लिए एक बेहतरीन ब्यूटी क्रीम है। ये आपकी जल्द को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाती है और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी स्किन जो है वो हमेशा पुरकशिश रहे, ब्यूटीफुल रहे, हसीन रहे, सुंदर रहे, तो आपने व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना है। और इसके इस्तेमाल के बाद जो है ना आपके चेहरे की खुश्की हो, दाग धब्बे हो, बेरोनकी हो, ये सारी चीजें कम हो जाती है जबकि आपकी जल्द जो है ना वो ज्यादा साफ और चमकदार महसूस होने लगती है। तो व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम में शामिल है जनाब खास अज्जा जो कि आपकी जल्द की हिफाजत करते हैं और कुदरती खूबसूरती को उजागर करते हैं और रोजाना इस्तेमाल से आपका चेहरा फ्रेश, खूबसूरत और पुरकशिश नजर आता है। तो आप सारे लोग इस्तेमाल करके देखिएगा व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम जो कि ऑल स्किन टाइप के लिए है, हर स्किन टोन चलाए तैयार कही वही आया सागर। अगर तुम मर्द आयो था तो मर्द भी लगाए सकन था, खवातीन भी लगाए सकन थी। उनका अलावा तुम व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड व्हाइट एज ब्यूटी साबुन जो इस्तेमाल करना आई व्हाइट एज ब्यूटी सोप अगर तुम नथा लगाना चाहो तुम चौथा दबा पास फेस वॉश वारा मानू आए फेस जरा व्हाइट एज की लवली क्रीम के बारे में जो कि भाई जेका पांचों में साल जेका ना पाण ही है। अगर तुम इस्तेमाल करना चाहो था गर्मी के मौसम में का एड़ी फेयरनेस वाली क्रीम जेका तुम इस्तेमाल करो तुम स्किन के हिफाजत भी पहुंचाए तुम स्किन की हिफाजत करने से गुड़ तुम स्किन के निखारे भी, तो तुम्हारे लिए व्हाइट एज की लवली क्रीम मौजूद है। आई व्हाइट एज की जेका लवली क्रीम है ना इन के अंदर 3 विटामिन जो कैप्सूल मौजूद है जेड़ी तरीके से तुम इस्तेमाल करना तो तुम्हें खबर हो जन घुर्जे इन के अंदर विटामिन B3 मौजूद है, विटामिन सी मौजूद है, विटामिन ई मौजूद है, खोड़ सारा वाइटमिन जी स्किन की हिफाजत करना। बी सब का वही गाल व्हाइट एज लवली क्रीम जो इन अंदर तुम सनस्क्रीन भी मिली, यानी अगर तुम व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम लगाए उस समय वनो था या कोई कम कर था या तुम कॉलेज गर्ल आए हो, यूनिवर्सिटी गर्ल आए हो या स्कूल गर्ल आए हो, स्कूल में भले ही सिर्फ छोकरियों ने लगाई हूँ बल्कि छोकरा भी लगाए सकन था, तो तुम स्किन की जो प्रोटेक्ट भी कदी सन जे यानी कि जो उस जहा मॉइस्चराइज रात हूँ ना जी उस जहा किरणा तुम्हें नुकसान पहुंचाना उन्होंने सभी चीजों का। तो व्हाइट एज लवली क्रीम जेका तुम्हारी ऑल स्किन टाइप जलाया है, एक फेयरनेस क्रीम है जेके तुम्हां डीहें जो भी लगाए सको था ई तुम्हां रात जो भी लगाए सको था, तमाम परफेक्ट एंड खूबसूरत फार्मूलो है जेको तुम्हां लाजमी ट्राई करे जो विटामिन से भरपूर है।

करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल त पोइ तव्हां डायल कयो 03-15-799-0595। ही नंबर तव्हांजे आसानी जे लाइ आहे। तव्हां हिन नंबर ते रातो करे पंहिंजे करीबी जनरल स्टोर से अवेलेबल कराए सघो था। सो बिल्कुल जी अवेलेबल करायो, खूबसूरत थींदा वञो। तव्हां सभिनी जो हक आहे खूबसूरती हासिल करण। ऐं हाणे तव्हांजे लाइ मार्केट में अवेलेबल आहिनि वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट, सो तव्हां लाज़मी ट्राए करे ॾिसजो। उन सां गॾोगॾु असांजी लिस्ट में गाना मौजूद आहिनि, सो मां चवां पई त गाना बि हलायूं, साथ साथ गाना बि इंजॉय कयो। सो ही हिकिड़ो सॉन्ग आहे चमन मीराली जी आवाज़ में, हिन गाने खे ॿुधंदासीं। ऐं तव्हां केरु केरु असां सां गॾु मौजूदु आहे, किथां खां असांखे ॿुधो पिया, तव्हांजे मैसेज तरफ़ बि ईंदासीं।

हिते असां सां गॾु मौजूदु आहिनि तव्हांजा फीडबैक, तव्हांजो ॻाल्हियूं, तव्हांजो कचहरियूं जेके तव्हां मूंसां कंदा आहियो। सो मां सोचां पई जेको न पैनल तां असां स्टार्टिंग कयूं या कॉमेंट जी तरफ़ अचूं। ओके, सो पैनल ते अचूं था। पैनल ते तव्हांजा कुझु मैसेजेस आहिनि। अच्छा, ये आशिक अली मलह हमारे साथ है, गोठ अर्ज मोहम्मद लगारी से। हाय डेडिकेट नसीर माशी को करते हैं आप गाना, बहुत शुक्रिया जी, आपको वेलकम करते हैं। नूर से दुनिया भाई हमारे साथ मौजूद है फ्रॉम बदीन। अदी सिद्रा, गुड आफ्टरनून, हैव अ नाइस डे, अल्लाह ब्लेस यू विद द बेस्ट विशेस, टेक केयर, अल्लाह पाक आपके नसीब अच्छे करे, आमीन जी सुम आमीन। और ये हमारे साथ मौजूद है आशिक अली मलह भाई, आपने दोबारा से वही मैसेज सेंड कर दिया है, सो बहुत शुक्रिया। और चाचा खालिद कहते हैं बेटा गाने की रिक्वेस्ट है। ओके जी, आई ट्राई। और ये गोठ मोहम्मद तैयब थेबू का हबीबुल्ला थेबू कहते तवां जो शो वेरी नाइस आहे, मोहब्बतूं प्यारे भाजू। ओके जी, मायरा भी असने प्रोग्राम बुधे पई, मायरा तवां जो भी मोहब्बतूं प्रोग्राम बुधो पया। इन खां अलावा जेको आहे न फेसबुक वारा माण्हू तवां पोस्ट के लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, सही आहे, जेतिरो तवां शेयरिंग कंदा ओतिरो मज़ो ईंदो आहे। सो शेयरिंग तमामु घणी कंदा कयो।

हा भैया हक़ीक़त त जेके माण्हू तव्हांखे प्यारा हूंदा आहिनि उन्हनि माण्हुनि जो तव्हां सदाई खेर घुरंदा आहियो ऐं उन्हनि माण्हुनि जे स्किन जो बि खेर घुरो बाबा ऐं पंहिंजे पेरेंट्स सोणनि खे जेको आहे न वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जेको आहे न तोहफ़ो कयो या फिर उन्हनि खे तव्हां मशवरो ॾियो त हाणे मार्केट में वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट अची विया आहिनि ऐं तव्हांखे वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट जो इस्तेमाल करणो आहे ऐं वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में तव्हांखे चङे तरीक़े सां ख़बर आहे त तव्हां इस्तेमाल कंदा आहियो जेके प्रोडक्ट तव्हांजी स्किन जे मुताबिक़ तयार थियल आहिनि ऐं जंहिंमें तव्हांजे लाइ सभ खां बहितरीन अगरि ॾिठो वञे त प्रोडक्ट आहे वाइट एश जी लवली क्रीम ऐं वाइट एश जी लवली क्रीम हिकिड़ो अहिड़ो प्रोडक्ट आहे जेको हिन में एज लिमिट बिल्कुल बि न आहे तव्हां हर उमिरि में हिन खे लॻाए सघो था तव्हांजी स्किन खे ख़ूबसूरत बणाईंदी तव्हांजी स्किन खे निखारींदी तव्हांजी स्किन जी हिफ़ाज़त बि कंदी छो त हिन में सनस्क्रीन बि एड थियल आहे सो बाबा एॾो ज़बरदस्त प्रोडक्ट अगरि मार्केट में अवेलेबल आहे त तव्हां वठो चवनि पिया।

कुंदर भाई हमारे साथ हैं। गुड आफ्टरनून मोहम्मद ताहिर लुंड बलोच हमारे साथ मौजूद है, वेलकम भाई को करते हैं। आशिक अली जलबानी हमारे साथ हैं, आशिक भाई आपको भी वेलकम हो गया। एक एक कलहोड़ो हमारे साथ हैं, कहते हैं आप ही फर्स्ट टाइम में आपका शो सुन रहा हूँ। अच्छा नहीं, आयशा हमारे साथ मौजूद है, आयशा हेयर हमारे साथ हैं और आप पहली मरतबा हमारा शो सुन रही हैं। वालेकुम अस्सलाम, आयशा को वेलकम करते हैं और आयशा आपको भी मशवरा देंगे कि आप भी जनाब व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इंतखाब कीजिएगा अगर आप चाहती हैं कि आपकी स्किन जो है वो हमेशा खूबसूरत रहे। तो अगर आप ये नहीं चाहते तो फिर आप सोचिएगा जरा। वैसे हर किसी का ये ख्वाब होता है कि उनकी स्किन जो है ना वो खूबसूरत रहे, तो आप व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिएगा। हिदायतुल्लाह कहते हैं कि अगर वो पूछ ले हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ ले हमसे। वाह अच्छा, उनका अलावा चाचा खालिद कहते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम शो एंड व्हाइट एज लवली क्रीम शो लाइक, क्या बात है, यानी कि आपको बड़ा पसंद आ रहा है, बहुत बढ़िया जी। किशोर भाई कहते हैं कि मुंह कड़े यूनी जो मुंह भी कौन डिठो आ, पर सब मुखा पुछन आए ने डियो खबर अॼुकल्ह छा पया पढ़ो। माशाल्लाह माशाल्लाह, स्कूल त डिठो अथव न भला एतिरो काफ़ी। अच्छा शहबाज, शहबाज भाई हमारे साथ हैं।

अच्छा हाँ, फायजा अली जा गाना बिल्कुल तव्हांखे ॿुधाईंदासीं। फायजा अली जी रिक्वेस्ट बि काफ़ी सारी जमा थी वई आहे, सो फायजा जो बिल्कुल गानो ॿुधंदासीं। कश्यप असां सां गॾु मौजूदु आहे, वालेकुम असलाम कश्यप। अच्छा कहती आज मुझे लग रहा है कि आप नहीं आई है। अब पता नहीं आपको ऐसा क्यों लग रहा है, लेकिन मैं तो आई हूँ और आपको कश्यप वेलकम करते हैं।

ओके जी, सो अज तव्हां जो कॉल्स त बिल्कुल वठंदा असीं, पर मां इहो सोचां पई त तव्हां जेके कॉलर्स मूंसां कॉल ते कनेक्ट थींदा, कॉल कंदा, या फिर तव्हां जेके बि माण्हू मूंखे मैसेज कयो था या फिर कॉमेंट कयो था, तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त हेतिरा ॾींहं थी विया आहिनि खेड़ सां प्रोग्राम कंदे, मतिलबु इलाही ॾींहं थी विया आहिनि, सो तव्हां मूंखे अॼु इहो ॿुधाईंदा त तव्हां छा हिन महिल ताईं को प्रोडक्ट वरितो आहे, सिर्फ़ अञा ताईं प्रोग्राम ॿुधो पियो? अछो त कुझु माण्हू अहिड़ा आहिनि जेके न, मतिलबु जेका शइ ॿुधंदा आहिनि त उहो मिंट में वेठी ईंदा आहिनि, कुझु माण्हू अहिड़ा हूंदा आहिनि जेके वरी इंतज़ार कंदा आहिनि, थोरो इंतज़ार न बल्कि इलाही सारो इंतज़ार कंदा आहिनि. सो तव्हां अॼु मूंखे इहो ॿुधाईंदा त तव्हां अञा ताईं जेको आहे प्रोडक्ट वरिता आहिनि या फिर सिर्फ़ तव्हां सोचो था त मूंखे वठणु घुरिजनि, तव्हां कहिड़ो प्रोडक्ट वठणु चाहियो था इहो बि तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा. अच्छा, आदिल हुसैन आप हमारे साथ मौजूद है, आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा है, बहुत शुक्रिया जी. और अदनान नूर हमारे साथ मौजूद है, वेलकम जी आपको भी, और जतिन बिश्त हमारे साथ है, वेलकम.

0: बनाओ अपनी फैमिली की लाइफ इजी एंड
1: बात हो, यही दिल चाहे रोज तुमसे ही बात हो, दोनों को ना भूल।

0: इतना प्यारा गाना मैंने लगाया तो ये गाना किसको डेडिकेट जाता है, तो जरा उसकी जाने भी आता है। ये प्यारा सा गाना हमें डेडिकेट किया है जी हमारी प्यारी लोभी ने, और हमारी प्यारी लोभी हमारे साथ मौजूद है। लोभी क्या कहती है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, जाने क्या हाल है? मैं भी आपके साथ साथ हूँ। अर्जी भुट्टो से आप हमारा शो सुन रही हैं, वेलकम। और कहती है कि मेरी प्यारी दोस्त, तुमसे मिलना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुश नसीबी है। तुम्हारे साथ गुजारे लम्हात मेरे लिए बहुत कीमती है। तुम्हारे साथ वक्त का पता ही नहीं लगा से एक घंटा गुजर गया। तुम तो इतनी प्यारी हो कि तुम्हें घंटों बैठकर देखा जा सकता है। पता है लोग कहते
1: इट्स 2 पीएम, दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय।
2: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ए कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो।
3: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।
4: दौरों पर मौजूदा इंतजामिया लॉजिस्टिक सोल्जन जरिए मुमकिन थो हो, पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज भी जंगबंदी दौरान आयो हो, जो कें भी किस्म की फौजी हंगामी सूरत हाल या हिफाजती कदम से ताल्लुक ना है। ख्याल से बदल बयानिए जो मकसद इलाकई सिखाम में अमन वाले कोशिशों के नुकसान पहुंचाण है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क्यादत के बेमान ए बार बार मौकफ तब्दील करण करार दे छो। तेहरान से रचायल यूनियम करण की इजाजत देने वाले मुहिदे तोते हटण जो इल्जाम लगाए छो। व्हाइट हाउस में सहाफिन से गाले डोनाल्ड ट्रंप ईरान अमरीका जंगबंदी वेंटिलेटर से है। तेहरान गाल इतफाक करण बाद फ्री वे तो कें भी सूरत में कबूल न कदी। तेहरान से अजा भी मुहिदे जहा इम्कान मौजूद आन। ईरानी आवाम के अखन के न वजन जो नतीजो नाकामी का सिवाय कुछ भी न हों। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाद है तो ईरान एटमी प्रोग्राम ते ठा न कंदो। तेहरान के डिनल चौदह तजवीजन जो बो को भी मतबादल ना है। ईरान के पार्लियामेंटी कमीशन तर्जमान इब्राहिम रजाई बीहर हमलो थो तो तेहरान यूरेनियम जो रचाव 90% तई वधाए छड़ी। मामले जो पार्लियामेंट जो भी जायजो वरतो वेंदो ए कौमी मफादन जो मौजूद फैसलो किया वेंदो। ईरान खिलाफ अमरीकी इसराइली जंग में यूएई भी शामिल हो। अमरीकी मैगजीन वॉल स्ट्रीट जर्नल की छिड़काइंद रिपोर्ट वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिब जंग दौरान गड़ियल अरब इमारत ने ईरान के लावान बेट से आयल रिफाइनरी के निशानो बनाया, जै सबब रिफाइनरी के बंद भी किया वो। हमलों अप्रैल में अड़े वक्त किया वो जै वक्त अमरीकी सदर ईरान से जंगबंदी जो ऐलान करण वारो हो। जंग में शमूलियत यूएई की शमूलियत अमरीका खामोशी से आजियां कई। जवाब में ईरान पर यूएई ए कुवैत पर हमला किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ सदारत हेठ मुल्की एक्सपोर्ट बाबत इजलास। वजीर आजम ने नंढे विचोले कारोबार सनतन के सहूलतू फराम करण बाबत हिकमत अमली जोड़ने की हिदायत। शहबाज शरीफ एक्सपोर्ट से बदल सनत आए मुल्की तरक्की जहा हदफ हासिल करण अंटर है। हुकूमत जो समूरो ध्यान एक्सपोर्ट में वाद ए सनतन के सहूलतू डे है। एक्सपोर्ट में वाद जो कारण बजंदड़ नवन कारोबार ए सनतन के हथी डेण लिथाबंदी कई वे।
5: सब एक पेज पर रहे इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट फुल फॉर्म सब एक पेज पर है। कोई आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं भेजी है। ये फॉर्म गैप तक सोशल मीडिया गैप तक जो है ये खबरें आ रही होती हैं। आप लोग क्योंकि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं हेड ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान उनकी सेहत के बारे में दुखी खबरें कभी और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वफाकी हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया। आनी नहीं आनी ये पता नहीं है। आप उस मिशन की तकसीम भी लेकर आ गए। सेक्शन की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी। कुछ भी हो जाए 28वीं आए या 28वां 2800 कदम में आ जाए सेक्शन की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है। ना कोई कर सकता है ना हम होने देंगे।
4: वफाक ए सिंध हुकूमत विच में खिलाफन वाली गालियां बेबुनियाद हैं। वफाकी हुकूमत ए सिंध हुकूमत एक पेज ते हैं। 28 तरमीम अचे या 29 सिंध के केर भी कदें भी विराय नो सके। खैरपुर में पीपुल्स बस सर्विस इफ्ताह तकरीब के खिताब कंदे मीडिया से गलाये सीनियर सूबाई वजीर शर्जीना मेम
6: change is inevitable.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
7: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज।
8: ताडू सुठो
7: GAFM 88 नेटवर्क,
9: सिंध की आवाज।
10: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करयो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो, जीए हुजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
11: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
12: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
11: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
12: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
11: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
12: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
11: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
12: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
11: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवान मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
12: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
11: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवान जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
12: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
11: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
12: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
11: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: खोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
1: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786
1: जी हा 2315525786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 2:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध के माथे का झूमर
4: GFM 88 नेटवर्क
5: सिंध की आवाज
2: जोशो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

0: सब वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइटिश एंडी स्किन ब्यूटी शो। ओके जनाब, सो इस प्रोग्राम में आप लोगों को खूबसूरती की बातें बताई जाती है और साथ साथ आप लोगों से जाना जाता है क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ना जिनके एरिया में अवेलेबल नहीं हुए अभी तक, या फिर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं या फिर आप अवेलेबल नहीं कराना चाहते, तो बहुत सी बातें ऐसी होती है जो कि हम जानना चाहते हैं। तो वेल, आज हम जो है ना आप लोगों की कॉल्स पे करेंगे या फिर अगर आप हमें मैसेज कर रहे हैं कॉमेंट कर रहे हैं तो आप मुझे जरा ये बताइए कि कहाँ कहाँ पर अभी तक अवेलेबल है, आप लोगों ने मालूम ली या नहीं। मैंने कुछ दिन पहले ही आप लोगों को ये असाइनमेंट दिया था कि भाई आप जरा मालूम करके मुझे ना बताइएगा कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल हैं, चाहे वो व्हाइट एज के प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन के प्रोडक्ट्स हो। जरा मुझे पता हो कि भाई कहाँ कहाँ पर कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हुए हैं या फिर अभी तक अवेलेबल नहीं हुए हैं, तो वो आप जरा ना मेरी थोड़ी सी मदद कर दें ताकि मुझे ये चीज पता होनी चाहिए कि कहाँ कहाँ पर मिल रहे और कहाँ कहाँ पर अभी तक नहीं मिल रहे। तो मैं आप लोगों से सबसे पूछूंगी कि भाई आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, अगर मिल रहे हैं तो आप परचेज कर चुके हैं या फिर नहीं, और उसके अलावा अगर आप अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपके पास नंबर है जनाब 03-15-799-0595। ये नंबर आप डायल कीजिए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर बसानी परचेज करते जाइए। अभी हम प्रोग्राम के दूसरे घंटे में आ चुके हैं तो जाहिर सी बात है आप लोगों के कॉल्स की जानेब आएंगे, लेकिन साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा डी स्किन प्योरी क्रीम के बारे में भी बताते हैं। तो डी स्किन प्योरी क्रीम के बारे में आप अच्छे से जानते हैं कि डी स्किन प्योरी क्रीम जो है जनाब ये विटामिन जनाब सीरम के साथ साथ तैयार शुदा है, इतना जबरदस्त है कि आप लगाएंगे तो कहेंगे भाई वाह क्या बात है मजे आ गए। तो आप जरूर ट्राई करके देखिएगा और उसके साथ साथ आपके एरिया में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे ये भी आप मेरे साथ शेयर कीजिए। बाकी रही बात आपकी कॉल्स की, तो आगे कॉल्स की जानब हम आते हैं और अगर आप भी कॉल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं। तो कॉलिंग नंबर हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए है 03-22-13-22-88। सारे लोग अब कॉल्स की जानेब आ गए। अच्छा फेसबुक वाले जितने लोग हमारे साथ ही पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए। ओके जी, तो हम जरा ये वाली कॉल पिक करते हैं। ये फर्स्ट प्रोग्राम की कॉल होने वाली, देखते कौन हमारे साथ मौजूद है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम
0: सलाम,
1: अलहमदुल्ला
0: जी जी खैर ताम बताया कैसे सगर मौजूद आए हो
1: आपके सभी
0: आसिफ भाई, साला खुश आयो
1: ताम बताया बाजी तेरी वीडियो क्रीम में से इस्तेमाल चो देश में वाइट देश
0: से तमाके केड़ी भली थी लगी माना ता ॻाल्हियूं त ॿुधियूं आहिनि ॿिन्ही जूं, हाणे तव्हां ॿुधायो त तव्हांखे कहिड़ी तरफ़ वञिणो आहे। अच्छा चलो डी स्किन वारी तव्हां लॻाइजो। चलो ॿई लॻायो, मिक्स करे फार्मूलो ठही वेंदो। जी जी टॉपिक इहो आहे त तव्हां मूंखे, मां तव्हांखे कुझु ॾींहं पहिरियां इहो चयो त किथे किथे अवेलेबल आहे, तव्हां पुछा कराइजो। सो तव्हां पुछा कराई त किथे तव्हांजे एरिया में मिले थी कोन थी मिले
1: आहे।
0: वाह वाह जबरदस्त, दिलि ख़ुशि करे छॾियो अलाह। हाणे के दोस्तन के याद करे बैठू जल्दी
1: ओतरो मनवर मोला ये सॉन्ग बजाय मुझे दोस्त घंटा वास पले गुस्ती गायब कटबर है जेने लाभ की
0: ओके थैंक यू सो मच मुनवर मोलाई जो गानो भा के बुधराइनासी भा पुछा कराया त किते अवेलेबल आइन सो तमा भी अगर पुछा कराया त मुखे बुधायो प्या अगर न पुछा कराया त तमा पुछा कराए वठो बाबा दिसो त सही किते किते अवेलेबल आइन मिलंदा कोंदा मिलन जे थोड़ो चाना है ना संगो खुड़को खबर पए वे वेण सा कुछ भी न मिलंदा ओके जी सो कॉलिंग नंबर 0332123228 नेक्स्ट कॉल देखते हैं कौन हमारे साथ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम आई केरा से सगड़ा सोनी छोकरी दुआ जो दुआ लगी वही असांगे साईं अच्छा दुआ तवा के ताज ही दुआ लगन कोनी लगे न पांजी न लगन दिया पांजी न लगन दिया ता मुझे कना के मतांज लगनम सही आ
1: हां मेन के लगन दिया खास करो करे
0: ये या बिल्कुल ये या मुखे बताए दुआ प्रोग्राम बदो प्या
1: हाँ बिल्कुल
0: अच्छा तुम मालूम कराई थे वाइट एज जा
1: प्रोडक्ट हाँ करूँ चेक कराई सेकंड करी जी स्टोर होया
0: हाँ
1: कौन मिली थे
0: कौन
1: मिली अंदर बाजार में मिले
0: मार्केट में रेशम कली में मिली वेंदी आराम सा
1: हाँ
0: चलो चक्कर लगाया ना रेशम कली जो शॉपिंग करी आई इधर तेजी तव खबर अथव शॉपिंग क्यों था वठी जो जरूर वाइट एज आर डी स्किन एंड बिनी मजा का बणी
1: हां चक्कर लगन
0: है चलो सही आ बे ओके ने दोस्तन की याद करनी दुआ आई ली दुश्मनन के सलामत अब दुश्मनो बुदो ना चलो दुश्मनन के सलाम पहुंची गया दुश्मनन के सलाम पर छोड़ ही दिया चलो या भली गाल है दुश्मनन के अना साड़ियो साड़ी दड़न के साड़ी दासी अच्छा चमर चाड़ी दासी चलो दुआ थैंक यू सो मच ना प्रोग्राम में कॉल के लाइव बने लगे दुआ दुआ गाल है थैंक यू अल्लाह हाफिज ओकरी दुआ मालूम कराई पर दुआ के कौन मिला प्रोडक्ट दुआ जदी रेशम गली मां मालूम कराई ना रेशम गली मां बिल्कुल तां के मिली वेंदा तां पजे करीबी जनरल स्टोर ता मालूम कराया अगर तमा के रेशम गली वेजी आहे लाड़काने वारन मानन के त ओ रेशम गली मां वठी छन अगर तमा बे सिटी मां असा के बुदो पया के बे शहर मां बुदो पया गोठ मां बुदो पया त तमा जे एरिया में मिले तो कौन बुधायो त खबर त पवे ओके जनाब सो कॉलिंग नंबर 0332123228 नेक्स्ट कॉल दिसो था नेक्स्ट कॉलर के जैसे सगर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम बाजी मोहम्मद अजीम बात कर रहा हूं डेटी से
0: ओके अजीम भाई कैसे हैं ठीक ठाक
2: अल्हम्दुलिल्लाह बाजी दुआ है अपना ठीक हो तब सही है
0: अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सुन रहे हैं अजीम भाई
2: जी जी बाजी सुन रहे हैं डी स्किन
0: ओके मुझे बताएं प्रोडक्ट के बारे में मालूमात ली आपने अपने करीबी जनरल स्टोर से पूछा मिल रही है नहीं मिल रही
2: पूछा है भाजी अभी तक आए नहीं है बोलते दो चार दिनों में आ जाएंगे
0: चलिए ये चीज जबरदस्त है और बताएं क्या कहना चाहेंगे
2: बस भाजी आपकी टीम को सलाम और सुनने वालों को सलाम
0: वालेकुम अस्सलाम थैंक यू सो मच अजीम भाई आपने कॉल करी
2: फौजी गुलाम कादिर
0: जी जी
2: फौजी गुलाम कादिर को सलाम मंशार खान को सलाम
0: जी जी
2: अब्दुल अजीज राजड़ी को सलाम
0: ओके थैंक यू सो मच अजीम भाई आपने कॉल करी बहुत अच्छा लगा और आपके एरिया में भी जल्दी अवेलेबल हो जाएंगे बस आप नंबर के ऊपर रابطے जो है ना वो बहाल रखिएगा और डायल करते रहिए 0332123228 नेक्स्ट कॉलर देखते कौन हमारे साथ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम भाजी अभी सोफन निकला है
0: عظیم بھاؤ خوش آیو صفا مزے میں پروگرام بدھو پیا
1: جی جی پروگرام بدھو پیا تمام سٹھو وی آپ کی پی ہو
0: یہ نہیں دل جائے کیا
1: جی جی ہاں پروگرام پر اسا جی ڈینگان دے شہر میں انیا جو کو ائی کریم یہ تو انیا کون آیو ہے
0: کیڑے شہر میں
1: ڈینگان جو شہر ڈینگان بھرگڑی جو شہر ہے
0: اچھا چلو تاں جی نے شہر میں ضرور اویل بل کرائیں داسی پر جکو من تا کے نمبر بدان دے پروگرام دے نمبر تے تو ایک دفعہ کال کری اٹھ جو چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے کہڑے دوستن کی یاد کندا جی پروگرام کال کئی پیارا بھا محبت ہوں تمہاں جو اوکے جناب کالنگ نمبر 0333221328 نیکسٹ کالر اس کے رسس اگر موجود ہے ہلو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: کے رسس اگر دا
3: نالو
0: سیما

0: नालो बिस्मा सही मां थोड़ी बोड़ी भी आया अच्छा बिस्मा तां पेरो टाइम जो का कॉल किया हेलो बिस्मा आवाज तां जो भी न पियो अचे हाने सफा सही तो अचे बिस्मा तवां ठीक आयो असा भी ठीक आयो सफा ठीक प्रोग्राम बुधो पिया बिस्मा
1: हाँ प्रोग्राम बुधूं था तांजी बिल्कुल तां प्रोग्राम तमाम भलो आए
0: थैंक यू मुख्य बुधाए था पुछा कराई तो वाइट एज जा प्रोडक्ट या डी स्किन जा प्रोडक्ट मिला था तमाजे करीबी जनरल स्टोर्स था या रेशम गली मां तू भी बनी वठी नहीं है
1: ऐसा नथा मिलनी पुछा कराया
0: किथा पुछा कराया
1: रहमतपुर मां
0: चलो ठीक है रेशम गली वंजो आणी दई शॉपिंग करना तो वठी अचजो
1: हां इंशाल्लाह
0: चले केने दोस्त जी जी जी याद कियो
1: मेरा खाला
0: जी
1: आई मुवारी भाई जी से ना दे मुवारी आप सी बुधे ती जाने प्रोग्राम
0: जी जी
1: ये देखो बुधे तो उनन सलाम
0: ओके जी वालेकुम
1: अस्सलाम
0: थैंक यू थैंक यू सो मच बिस्मा असनी प्रोग्राम में कॉल कई माशाल्लाह सुनी छोकरी हुई रहमतपुर खान असन जो प्रोग्राम बुझन पया वाह वाह वाह वाह गानो एकड़ो मौजूद है गानन जो फरमाइश कुछ थी वई मैं सोचा पई त गाना भी साथ साथ लगाइंदा अचू जी तमाचा गाना भी गड़गड़ है लंदा अचन आई साईं वडे के चमा त ही वारो गानो डाडो भलो गानो आहे

0: It's 2:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness, chamak aisi diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
2: सिंध के माथे का झूमर
0: DFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज
3: खूबसूरती है जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एंड जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एंड चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एंड दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
4: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत
5: अवां जे पंहिंजे शहर माथली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो बदीन रोड मातली
4: खुशखबरी खुशखबरी ये शहर मौजे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वन था जैमे
5: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिथे मसाने बया मुख्तलिफ़ किस्म जा ऑपरेशन कया वन था जे लाए मुख्तलिफ़ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा
4: जिते डॉक्टर आफ्ताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंझंद 2 वगे खां रात 8 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
5: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़्ताब
4: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंद 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजन जो इलाज कंदा
5: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंद 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजन जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
4: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: जडे मां पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफां पेश कयो वियो।
2: जिंदगी गुज़ारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी ॿुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान।

0: चलो थैंक यू जी जी चलो ठीक है मैं शेला गुल खेलाइंदा मुझे प्यारा बात अनुभव प्रोग्राम में तुम कॉल कई है कॉलिंग नंबर है 0332132322 डबल एट मैं कोशिश क्या पे तो जाम कॉलिंग वा जी तुम जाम कॉलर असने प्रोग्राम में शामिल थी सको सो ही वारी कॉल भी वो था दिसों केयर कॉलर से सगड़ मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: केयर से सगड़ आ
1: ज़हीर ना ज़हीब लारकाने का
0: ज़हीब कॉल किया लारकाने का छाला ज़हीब ठीक आयो
1: अल्हम्दुलिल्लाह खैरा था बुधायो घण खैरा
0: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक प्रोग्राम उदो पे आसा जो ज़हीब
1: जी बिल्कुल उदो का ता जसा कल बिचो पे आवेले तो सगा रहमतपुर में
0: रहमतपुर में बिल्कुल छोकरी भी कॉल कई छे रहमतपुर में कौन था मले रहमतपुर में तमा चले आवेले डबल कराई ता सही आ
1: थैंक यू
0: ओके ता बियो गेडन दोसन के याद कंदा
1: मया दोस्त आसिफ चाचा
0: जी जी
1: मुझे पासे तैयार हो जनल आप दी आई बाने जो शफीक
0: चलो थैंक यू सो मच तुम प्रोग्राम में कॉल कई ज़हीब लारकानी खान तुम भी कॉल कर सको था कॉलिंग नंबर है 0332132322 एंड 88 नेक्स्ट कॉलर इज़ केयर मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम अदे गिलूर का खालिक लाखारी
0: गला ओके खालिक भाई साला खुश आयो
2: अल्हम्दुलिल्लाह
0: तुम बता अल्हम्दुलिल्लाह मजे में प्रोग्राम बदो प्या
2: ये आदि प्रोग्राम आज मुकम्मल बुझो तो एको
0: नालो जे पे प्रोग्राम मुजे जो
2: अभी नालो आज नव जो फिरी मारो है माना डीएस के ने नालो थोड़ो दुख है नव आज ने समझ लो जरूरी नहीं तो मिले कौन सी है बहुत कराया ना बदी ने आज आई प्रोसेस अच्छी
0: जी जी
2: रिजल्ट भी
0: चलो जबरदस्त जबरदस्त तुम बुधाए जो मुख्य तक रिजल्ट क्या मिले पे तुम कड़ो प्रोडक्ट लगा पाया यो भी बुधाए जो सही है चलो जबरदस्त केड़ा दोस्तन की याद कंदा
2: हाजी कुर्बान खास करे बुधो तो अजीज सोलंकी बुधो तो अजीज जलवाल है यार मोहन सोलंकी है गुलाम रसूल वरी
0: है थैंक यू सो मच प्रोग्राम में कॉल कई प्यारा भा चले जी माशाल्लाह अजकल मु या शे नोटिस कई आहे तो मुजा जके कॉलर्स आए ना वो डाढा माशाल्लाह जके ना सुलझल थी विया है और लाला के जी कॉल ड्राव थी वही वाज रे सो बिल्कुल तमा ये टॉपिक के फॉलो करना कर जका चीज ता का पुछी वने उने बारे में बुदाईना कयो एंड कॉलिंग नंबर आहे 0332132322 ही वाली कॉल उठो ता दिसु के रस्ते सगत मौजूद है हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम के रस्ते सगत आ पप्पू अच्छा प्रोग्राम बुधो पे पप्पू भाई
1: हाँ

0: मन बुध था
1: जी
0: जी जी छापे चो हाँ थैंक यू सो मच तांजो आवाज अलाए छ मुके कुछ समझ में न पहुंचे सो मोबाइल तू पप्पू भाव जो नेक्स्ट कॉल रिटू था कॉलिंग नंबर आहे 0332132288 शायद ही कॉल मुका ड्रॉप थी हुई सो हेलो अस्सलाम वालेकुम केर असां सां गॾु आहे एॾो प्यार सां ॻाल्हाए अमान अला भा ख़ुशि आहियो एॾो भलो ॻाल्हाइण किथां सिखियो अथव पाणी अची वियो अथव
1: हा बिल्कुलु छा चयो हिकिड़ी मूंखे दिलि में उमेद

0: मुलाकात
1: या काल लगी वने चल मुखे यो बुधाए तो तवा जे एरिया में प्रोडक्ट मिलन था जे बारे बुधाया थी
0: यो मिले को तो भटारो
1: अल्लाह यो तो कम सही ना है ना दिस
0: पर ता जे को नंबर बुधायो ना वरी निमाय जे जो को कुछ रात को कंदा दी शाम मजो भले से जगह बाद में
1: जी जी इन मानू से जरूर गाला जो तमा जे एरिया में जल्दी अवेलेबल कराए छदीदा प्रोडक्ट
0: हां जी जी आपी
1: चलो प्यारा भा तमा से गाला इलाही सुठो लगो और किरण दोस्त की याद कंदा जी जी
0: एक सॉन्ग गुड न्यू आयो ओ मुजी जाना इंडियन आप लाए पाने पाकिस्तान या ओ मुजी जाना
1: थोड़ो गाय देखारियो त मां सर्च करे वठा
0: ओ मुजी जाना ओ मुजा दिलबर ई आला किया
1: चलो ठीक आ मां दिसा थी अगर मुखे जी जी मिलियो त तवा जला हलो
0: जेना या हो न नथो जे हो जे पोरियो सोग मिले छ जे रिशान जो
1: चलो
0: मैं जिया करूं बिस्मिल्ला ओ जनवासी सत के थे
1: ओके ओके थैंक यू सो मच प्यारा भा प्रोग्राम में कॉल कई माशा इलाही सुठो कॉलर हुयो और बस कॉलियूं एस ताईं वठंदासीं हाणे कॉलर्स के जेको थोड़ो रेस्ट कराई था या ही एकड़ी कॉल वठी दिसो वाला शेड्यूल चवे थी सो हेलो अस्सलाम वालेकुम हेलो अस्सलाम वालेकुम ऐसी नेटवर्क इशू ओके सो बस साने कॉलर्स अगेन तां रेस्ट कयो वरी इंशाल्लाह सुभाणे तव्हां जी कॉल्स वठंदासीं प्रोग्राम आहे जनाब असांजो पंहिंजो सोणो सोणो प्रोग्राम जंहिंमें तव्हांखे सोणे सोणे थियण जूं ॻाल्हियूं ॿुधाईंदा आहियूं वाइट एशियन डी स्किन ब्यूटी शो आहे वाइट एश प्रोडक्ट्स आहिनि डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स आहिनि तव्हांजी ख़ूबसूरती आहे ऐं जनाब असां आहियूं

बहुत ही प्यारा और खूबसूरत गाना है, गाना सुनेंगे और साथ साथ यहाँ पर आप लोगों को बताएंगे जनाब कि आपका हमारा जो साथ है ना वो बिल्कुल यहीं तक था, क्योंकि आप लोगों से इजाजत लेने का वक्त जो है ना वो बिल्कुल करीब आ चुका है। गाना लगाए तो आप सोचेंगे कि भाई थोड़ा सा गाना भी सुनने दे दिया करें जालिम, तो बिल्कुल गाना सुनेंगे और यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद उन तमाम लोगों का बहुत ज्यादा वाला शुक्रिया, और जो लोग हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं उनका भी बहुत ज्यादा शुक्रिया। प्रोग्राम सुनते हैं साइलेंट होगी या फिर शामिल होकर बता देते हैं, आप सब लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। और वाइट एशियन टी स्किन ब्यूटी शो आप लोगों का अपना प्रोग्राम जिसमें आप हमारे साथ मौजूद रहते हैं, प्रोग्राम भी आप लोगों का अपना है तो आप जरूर से बता दिया करें कि आप हमारे साथ साथ। और वाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स के जो प्रोडक्ट्स है ना ये सारी आप इस्तेमाल करके देखिएगा, उसके अलावा डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स भी आप ट्राई करके देखिए, बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, इस्तेमाल कीजिए, लगाते रहिए, खूबसूरत और दुनिया को बता देंगे भाईजान आप भी हसीन हैं। ओके सो वरीन सलाह तवा से मुलाकात मुझे सुभाने थियण वारी आहे, तो पंहिंजो ओ हिन सरो ख़्याल रखंदा, किथे का ग़लती थी हुजे त मां माज़रत कयां पई। सो मोकिलाणी नाहे बाबू सन सलामत सा सलामत, अलाह हाफ़िज़, बाय बाय, लव यू ऑल एंड

0: It's 3 p.m. This line check is brought to you by
1: जॾहिं मां पंहिंजो ख़्यालु रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे। ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो।
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: ईरानी परे वज़ीर जो पाकिस्तानी दौरो बि मौजूदु आहे। इंतज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलियत ज़रिए मुमकिन थियो हो। पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज बि जंग वज़ीर दौरान आयो हो, जंहिं जो कंहिं बि क़िस्म जी फ़ौजी हंगामी सूरत हाल या हिफ़ाज़ती क़दमनि सां तालुक नाहे। ख़यालनि ते ॿधल बयानीअ जो मक़सदु इलाइक़ाई इस्तेहकाम ऐं अमन वारनि कोशिशुनि खे नुक़सान पहुचाइणु आहे।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03125252786
2: जी हा 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

अपना शहर अपना घर माथली और माथली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अवां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी। हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अवां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अवां खे रेडियंट लुक। रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जे हासिल करण लाइ ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार, ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: क्या देख रहे हो?
2: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो।
1: बाहर से भेजे गए रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
5: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में

0: हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था। जंहिं में
1: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, अंडे, पिथे, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
0: जिते डॉक्टर आफ़ताब ऐं जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान, न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है
4: सुनते रहो GFM 90.4
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
2: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 03132525786
2: जी हा 2315525786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

0: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पेंजे शहर मातली में अवां जे जातल सुनातल एवान मेडिकल सेंटर में हाने हर किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे में
1: सीजर नॉर्मल डिलीवरी अंडे पिते मसाने ब्या मुख्तलिफ किस्म जा ऑपरेशन कया वनन ता जे लाए मुख्तलिफ किस्म जा माहिर डॉक्टर ए सर्जन 24 कलाक मौजूद हुंदा
0: जिते डॉक्टर आफताब एवान जनरल फिजिशियन रोजानो मंजत 2 वगे खा रात 8 वगे ताई मरीजन जो मुआइनो कंदा गायनेकोलॉजिस्ट आई औरतन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
1: ऐं गायनेकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
0: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझन 2 वगे खां शाम 4 वगे ताईं डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझन 12 वगे खां 1 वगे ताईं मरीजनि जो इलाज कंदा
1: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वगे खां 3 वगे ताईं मरीजनि जो मुआइनो कंदा डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद
0: एड्रेस एवान मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाड़ी चौक बदीन रोड मातली।

0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:55 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
0: क्या देख रहे हो? ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें।
3: 578 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है।
0: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे?
1: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफाव पाणी सेहतमंद जिंदगी जी ज़मानत।
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां खिदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
4: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
4: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
5: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: इट्स 4 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जडे माँ पांजो ख्याल रखंदी आहे त सेहत नसलन ताई हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफा पेश कयो वयो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.
3: ईरान जा केतिरा ई जहाज पाकिस्तान पहुता जिन जो मकसद सफारती अमले सिक्योरिटी टीम ऐं ॻाल्हियुनि वारे अमल खे आसान बणाइण हो. कुझु जहाज ऐं अमलो ॻाल्हियुनि जे ॿिए दौर खे नज़र में रखंदे पाकिस्तान में ई मौजूद रहियो. ॿियो दौर अञा बाज़ाबता शुरू नाहे थियो पर आला सतही सफारती राब्ता जारी आहिनि. ईरानी परे वज़ीर जो पाकिस्तानी दौरो बि मौजूदा इंतिज़ामी ऐं लॉजिस्टिक सहूलियतुनि ज़रिए मुमकिन थियो हो. पाकिस्तान में मौजूद ईरानी जहाज बि जंगबंदी दौरान आयो हो, जंहिंजो कंहिं बि क़िस्म जे फ़ौजी हंगामी सूरतहाल या हिफ़ाज़ती क़दमनि सां तालुक नाहे. ख़्यालनि ते वधल बयानीअ जो मक़सदु इलाइक़ाई इस्तेहकाम ऐं अमन वारनि कोशिशुनि खे नुक़सान पहुचाइण आहे. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरानी क़यादत खे बेईमान ऐं बार बार मौक़िफ़ तब्दील कंदड़ करार ॾेई छॾियो. तहरान ते रचायल यूरेनियम कढण जी इजाज़त ॾियण वारे मुआहिदे तां बि पोइते हटण जो इल्ज़ाम लॻाए छॾियो. व्हाइट हाउस में सहाफ़िन सां ॻाल्हाईंदे डोनाल्ड ट्रंप चयो त ईरान अमेरिका जंगबंदी वेंटिलेटर ते आहे. तहरान ॻाल्हियुनि ते इतफ़ाक़ करण बाद फिरी वञे थो, कंहिं बि सूरत में क़बूल न कंदासीं. तहरान सां अञा बि मुआहिदे जा इम्कान मौजूद आहिनि. ईरानी عوام जे हक़नि खे न मञण जो नतीजो नाकामी खां सवाइ कुझु बि न हूंदो. ईरानी पार्लियामेंट जे स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालेबाफ़ चयो आहे त ईरान एटमी प्रोग्राम ते ठाह न कंदो. तहरान जे ॾिनल 14 तजवीज़ुनि जो ॿियो को बि मुतबादिल नाहे. ईरान जे पार्लियामानी कमीशन जे तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई चयो आहे त ॿीहर हमिलो थियो त तहरान यूरेनियम जो रचाव 90% ताईं वधाए छॾींदो. मामले जो पार्लियामेंट में बि जाइज़ो वरितो वेंदो ऐं क़ौमी मुफ़ादनि मूजिबि फ़ैसिलो कयो वेंदो. ईरान ख़िलाफ़ अमेरिकी ऐं इसराइली जंग में UAE बि शामिल हो. अमेरिकी मैगज़ीन वॉल स्ट्रीट जर्नल जी छिरकाईंदड़ रिपोर्ट. वॉल स्ट्रीट जर्नल मूजिब जंग दौरान गलियल अरब इमारतुनि ईरान जे लामान बेट ते ऑयल रिफाइनरी खे निशानो बणायो, जंहिं सबबि रिफाइनरी खे बंदि बि कयो वियो. हमिलो अप्रैल में अहिड़े वक़्त ते कयो वियो जंहिं वक़्तु अमेरिकी सदर ईरान सां जंगबंदीअ जो ऐलान करण वारो हो. जंग में शमूलियत ते अमेरिका ख़ामोशीअ सां आजिया कई. जवाब में ईरान बि UAE ऐं कुवैत ते हमला कया. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ जी सदारत हेठि मुल्की एक्सपोर्ट बाबति इजलास. वज़ीर आज़म जी नंढे ऐं विचोले कारोबार ऐं सनअतुनि खे सहूलियतूं फराहम करण बाबति हिकमत अमली जोड़ण जी हिदायत. शहबाज़ शरीफ चयो त एक्सपोर्ट ते वधल सनअत ऐं मुल्की तरक़ीअ जा हदफ़ हासिल करण अनटर आहिनि. हुकूमत जो समूरो ध्यानु एक्सपोर्ट में वाध ऐं सनअतुनि खे सहूलियतूं ॾियण ते आहे. एक्सपोर्ट में वाध जो कारण बणजंदड़ नवनि कारोबारनि ऐं सनअतुनि खे हथी ॾियण जे लाइ रिथाबंदी कई वञे.
4: सब एक पेज पर हैं. इस वक्त फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंसल गवर्नमेंट, एस्टेब्लिशमेंट, फुल कॉम, सब एक पेज पर हैं. कोई आपस में कोई डिफरेंसेस नहीं भेजी है. ये फॉर्म गैप तक, सोशल मीडिया गैप तक जो है, ये खबरें आ रही होती हैं. आप देखिए कि मुल्क के जो सबसे बड़े आईनी अहदे पे बैठे हुए हैं, हेड ऑफ द स्टेट पाकिस्तान, उनकी सेहत के बारे में झूठी खबरें कभी, और ये सारी चीजें प्रोपेगेंडा का हिस्सा है. इसका हकीकत से कोई ताल्लुक वफाकी हुकूमत ने कोई मसूदा शेयर नहीं किया. आनी नहीं आनी ये पता नहीं है. आप उस मिशन की तकसीम भी लेकर आ गए. मिशन की तकसीम किसी भी सूरत में नहीं होगी. कुछ भी हो जाए, 28वीं आए या 28वां 2800 तब्दील में आ जाए, मिशन की तकसीम किसी भी सूरत में नामुमकिन है. ना कोई कर सकता है, ना हम होने देंगे.
3: वफाक ऐं सिंधु हुकूमत विच में इख़्तिलाफ़नि वारियूं ॻाल्हियूं बेबुनियाद आहिनि. वफाकी हुकूमत ऐं सिंधु हुकूमत हिक पेज ते आहिनि. 28वीं तरमीम अचे या 29वीं, सिंधु खे केर बि ऐं कॾहिं बि विरहाए नथो सघे. खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जे इफ़्तिताह वारी तक़रीब खे ख़िताब ऐं मीडिया सां ॻाल्हाईंदे सीनियर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन चयो त GDA खे फाल करणु सुठी ॻाल्हि आहे. सिंध में पीपल्स पार्टी जो केर बि मुक़ाबिलो नथो करे सघे. सिंधु हुकूमत पाकिस्तान में सभिनी खां वधीक ऐं सुठो कमु करे रही आहे. सुठे कम बावजूद पीपल्स पार्टी ते तनक़ीद कई पई वञे. सोशल मीडिया ते मुहिम हलाई पई वञे. शर्जील इनाम मेमन खैरपुर में पीपल्स बस सर्विस जो इफ़्तिताह बि कयो. सिंध असेंबली सूबे में गैस की लोड शेडिंग खिलाफ ठहराव या किराए से मंजूर करे वो सूबे में हिमायत कई गैरत के नारे से औरतों के कत्ल खिलाफ भी ठहराव या किराए मंजूर कर वो बिल्किस मुख्तार सिंध असेंबली कानून तो मंजूर किया पर उन्होंने अमल नो थे सूबे वजीर रज़ा पेजू असा गैरत के नाले से औरतों के कत्ल खिलाफ ठहराव की हिमायत क्यों था सिंध में कारोकारी जा जरगा छो थन था तंजीला कमराणी चो कें भी रस्म तहत औरत जो कत्ल कबूल जोगो ना है। पंजाब में औरतों के हिरासा कदरन सा का भी रियायत न थी औरतों के लिए पंजाब के महफूज बनाने मुझी पहली तरजीह है। लाहौर में तकरीब के खिताब कदे पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज औरतों की ऑनलाइन हैरेसमेंट रोकने के लिए भी निजाम जोड़े रहा हूं वालदेन भी हैरेसमेंट वाले मामले थे धीरन जो साथ दियन। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मरवत के सराय नौरंग में धमाको नव जना शहीद उनटी का जख्मी शहीदन में ब पुलिस एहलकार भी शामिल डीपीओ लकी मरवत मूजिब शुरुआती जांच में धमाको आपघाती लगी रो है धमाकेदार मादो लोडर रिक्शा में आंदो वो जांच कई पी वे। बारह मई 2007 के सानिये के उणवी साल मुकम्मल शहर में रत की होली खेड कानून के कठड़ में न आया सिंध में वकीलन पारा अदालती कार्रवाई के बायकॉट मुख्तलिफ शहर में मुजाहरा कराची हैदराबाद सखर लाड़कानो नवाबशाह में वकीलन पारा अदालती कार्रवाई का बायकॉट किया वो

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क।
2: छा अहां जो चेहरो बेजान आई डल लगे थो, हाणे वक्त आहे चमकण जो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल, जेका दे कुदरती निखार, साफ नरम आई रोशन चेहरो। पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहंजो चेहरो, जीए होजे हीरो। है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम, चेहरे जी असल चमक जो राज।
3: खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
4: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
3: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
4: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
3: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
4: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
3: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: It's 4:30 PM. This time check is brought to you by
1: Hame Diamond Glow Bleach Cream, jo deep clean kare aur de 4 guna brightness. Chamak aise diamond skin jaisi. Hame Diamond Glow Bleach Cream.
0: Har din har pehar, zindagi ki lehar. GFM 88 Network, Sindh ki awaaz.
2: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम. इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार. सिर्फ 2 दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो.
3: क्या देख रहे हो?
4: ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो.
3: बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे. जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस. इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें.
5: 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है.
6: अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं.
4: तो भाई साहब क्या समझे.
7: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का.
8: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत.
9: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे. सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
8: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
9: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे.
8: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे.
9: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे.
8: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो. असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे. वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920.
9: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली.
8: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं में
9: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने ऐं ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था. जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा.
8: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
9: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
8: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं. डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा.
9: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा. डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद.
8: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली.

0: अमर सिंध जे सींद में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230 कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़श ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM
3: 90.4 पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
1: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
1: जी हा 2331525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हईअ में सूर

0: कास्ट आरसीसी घरन जो पकियो छिटू लगरा लाए खुश खबरी छा चाहो था अवां जे घरन जो छिटू पकियो हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगराण लाए राबतो कंदा खुदा बख्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
1: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4

0: इट्स 5 PM. दिस टाइम चेक इज ब्रॉट टू यू बाय.
1: जॾहिं माउ पंहिंजो ख़्याल रखंदी आहे त सिहत नसलनि ताईं हलंदी आहे. ही पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो वियो.
2: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज़.

पंजाब में औरतुनि खे हिन सां कंदड़नि सां का बि रियायत न थींदी। औरतुनि लाइ पंजाब खे महफ़ूज़ बणाइण मुंहिंजी पहिरीं तरजीह आहे। लाहौर में तकरीब खे ख़िताब कंदे पंजाब जी वज़ीर आला मरियम नवाज़ चयो त औरतुनि जी ऑनलाइन हिरासमेंट रोकण लाइ बि निज़ाम जोड़े रहिया आहियूं। वालदेन बि हिरासमेंट वारे मामले ते धीअरनि जो साथ ॾियनि।

खैबर पख्तूनख्वा के इलाके लकी मुरवत के सराय नूरंग में धमाको, नव जणा शहीद, 29 का वधिक जख्मी। शहीदन में ब पुलिस अहलकार भी शामिल। डीपीओ लकी मुरवत मूजिब शुरुआती जांच में धमाको आपघाती लगी रो है। धमाकेदार मादो लोडर रक्षा में आंदो वो हो। जांच कई पी वे।

0: ब्यूटीफुल हेयर और एक भी सफेद बाल नहीं, मेरा सीक्रेट।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
4: लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम। लोग कहते हैं मेरी स्किन की चमक है डायमंड जैसी। मेरी स्किन की डायमंड जैसी चमक है मेड डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम से, जो डीप क्लीन करे और दे 4 गुना ब्राइटनेस। चमक ऐसी डायमंड स्किन जैसी
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओजिनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे।
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर किस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भटी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंद 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर नज़द नोतकाणी चौक बदीन रोड मातली।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: प्रिंट का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: It's 5:30 p.m. This time check is brought to you by
1: Hemay Diamond Glow Bleach Cream. Kudrati jizan sa tayar kayal. Jeka de kudrati nikhar. Saaf, naram ay roshan chehro. Hemay Diamond Glow Bleach Cream.
2: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
3: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
2: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: अवां जी स्किन डल ए बेरोनक लगे थी हाने पेंजी स्किन के दियो एक नव गिलो पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम अवां जी स्किन के बनाए फ्रेश सॉफ्ट ए ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो दी अवां के रेडिएंट लुक रोजानो जे इस्तेमाल सा हर किस्म जी स्किन जे लाए परफेक्ट हाने थियो खूबसूरत थियन वधिक आसान वाइट एज ब्यूटी क्रीम खूबसूरती जेका चमके हर डी बेहतरीन रिजल्ट हासिल कर लाए वाइट एज ब्यूटी क्रीम सा गड इस्तेमाल करियो वाइट एज ब्यूटी सोप वाइट एज ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड वाइट एज ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
5: अम्मा हेडो से मके छा मिलियो
6: पुत्र

0: असांजे पाणी साफ़ न आहे, तंहिंजे करे त असां बीमार था थियूं। असांखे पाणी ऐं सफ़ाई ॿिन्हिनि जो ख़्यालु रखणु घुर्जे।
1: केॾो सियाणो पुटु आहे मुंहिंजो
0: बाबा, इहो ई जासूस तव्हांखे बचाईंदो।
2: साफ़ पाणी, महफ़ूज़ ज़िंदगी, दस्तन खां बचा। हीउ पैगाम कश फाउंडेशन ऐं कैनेडियन गवर्नमेंट जे तरफ़ां पेश कयो।
3: क्या देख रहे हो, ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनामात जीतने का मौका पाओगे, जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार, साथ ही मोटरसाइकिल्स, स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें। 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
4: बैंक अलबीब, रिश्ता भरोसे का।
5: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
6: अवां जे इत्माद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: खुशखबरी खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जे ॼातल सुञातल एवाण मेडिकल सेंटर में हाणे हर क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं में
6: सीज़र, नॉर्मल डिलीवरी, आंडे, पिते, मसाने, ॿिया मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा ऑपरेशन कया वञनि था, जंहिं लाइ मुख़्तलिफ़ क़िस्म जा माहिर डॉक्टर ऐं सर्जन 24 कलाक मौजूद हूंदा,
5: जिते डॉक्टर आफ़ताब एवाण जनरल फिज़िशियन रोज़ानो मंझंदि 2 वॻे खां राति 8 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर राहिला भट्टी
6: ऐं गायनाकोलॉजिस्ट ऐं औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टर डॉक्टर नाहिद आफ़ताब
5: ऐं डॉक्टर हमीदुल्ला पठान न्यूरो सर्जन अरबा मंझंदि 2 वॻे खां शाम 4 वॻे ताईं, डॉक्टर ज़हूर अहमद मेमण दिमाग़ी बीमारियुनि जो माहिर मंझंदि 12 वॻे खां 1 वॻे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदा,
6: ऐं डॉक्टर सजाद अहमद न्यूरो फिज़िशियन हर आचर जे ॾींहुं मंझंदि 2 वॻे खां 3 वॻे ताईं मरीज़नि जो मुआइनो कंदा। डॉक्टर कंबर लिगारी जनरल सर्जन एसोसिएट प्रोफेसर लियाकत यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल हैदराबाद।
5: एड्रेस एवाण मेडिकल सेंटर, नज़्द नोतकाणी चौक, बदीन रोड, मातली।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
3: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
1: तो पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
3: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
1: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
3: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
1: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
3: 03125252786
1: जी हा 2315525786
3: GFM रेडियो नेटवर्क
1: सिंध जो आवाज़

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: छा अहाजो चेहरो बेजान आई डल लगे थो हाणे वक्त आहे चमकण जो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम सा कुदरती जुजन सा तैयार कयल जेका दे कुदरती निखार साफ नरम आई रोशन चेहरो पहरे ही इस्तेमाल में फर्क महसूस करियो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम तहां भी चमकायो पहजो चेहरो जीए हुजे हीरो है में डायमंड ग्लो ब्लीच क्रीम चेहरे जी असल चमक जो राज।
2: क्या देख रहे हो ये सब तो तुम बाहर से रकम वसूल करने पर भी जीत सकते हो। बाहर से भेजी गई रकम बैंक अलबीब के कैश काउंटर से वसूल करोगे तो हर रेमिटेंस पर शानदार इनाम जीतने का मौका पाओगे जैसे कि ग्रैंड प्राइज 600 सीसी कार साथ ही मोटरसाइकिल्स स्मार्टफोन्स और स्मार्ट वॉचेस। इन भाई साहब की तरह बड़ा ख्वाब देखें 538 शहरों में बैंक अलबीब के 1320 से ज्यादा ब्रांचेस और ग्लोबली ट्रस्टेड पार्टनर्स के साथ आपका पैसा दुनिया के किसी भी कोने से आप तक मिनटों में पहुंचता है। अपनी रेमिटेंस 19 फरवरी से 25 मई के दरमियान बैंक अलबीब से वसूल करें और हर महीने लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं। तो भाई साहब क्या समझे।
3: बैंक अलबीब रिश्ता भरोसे का।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: पिंकीअ खे कराची पुलिस जे ॾिनल प्रोटोकॉल सिंध पुलिस जे भिटे मयार खे बि ज़ाहिर करे छॾियो। कुझु ॾींहं अॻु कराची प्रेस क्लब ॿाहिरां पहुतल औरत मार्च जे अॻवाणनि शीमा करमाणी ऐं ॿियनि खे गिरफ़्तारी दौरान तज़लील जो निशानो बणायो वियो हो। साॻे ई पुलिस अॼु मंशियात फिरोश औरत खे प्रोटोकॉल ॾींदे नज़र आई।
1: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जे ताज़नि नतीजनि ख़िलाफ़ सिंध असेंबली में ठहराउ जमा। साल 2024 जी जारी कयल चटाभेटी इम्तिहाननि जा नतीजा मुअतल करण जो मुतालबो। इम्तिहानी अमल मार्किंग ऐं मेरिट लिस्ट जी शफ़ाफ़ जांच लाइ पंजाब जी फॉरेंसिक लैब खां जांच कराइण जी घुर। करप्शन ऐं मेरिट जी रफ़्तार साबित थियण ते कार्रवाई जो मुतालबो। ठहराउ एम क्यू एम जे एम पी ए मोहम्मद बास महबूब पारां असेंबली जे सेक्रेटरी वटि जमा करायो वियो।
0: सिंध असेंबली सूबे में गैस जी लोड शेडिंग ख़िलाफ़ ठहराउ मंज़ूर करे वरितो। सूबे में गैस जी लोड शेडिंग बंदि करण जो मुतालबो। एम पी ए मोहम्मद अवेस पारां पेश कयल ठहराउ जी हुकूमत ऐं एम क्यू एम मेंबर्स बि हिमायत कई। गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ बि ठहराउ मंज़ूर। बल्कीस मुख़्तार चयो त सिंध असेंबली कानून त मंज़ूर कया आहिनि पर उन्हनि ते अमल नथो थिए। सूबाई वज़ीर अज़रा फज़ल पेचूहो जो चवणो हो त असां गैरत जे नाले ते औरतुनि जे क़तल ख़िलाफ़ ठहराउ जी हिमायत कयूं था। सिंध में कारोकारी जा जरगा छो थियनि था? तंज़ीला कमराणी जो चवणु हो त कंहिं बि रस्म तहत औरत जो क़तल क़बूलण जोॻो न आहे।

अब चमकती नर्म और बेदाग जेल एक क्रीम की दूरी पर। हेमी नेचुरल्स के पिंक डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम, इसमें शामिल है SPF 30 जो सूरज के नुकसानदेह श्वाओं से तहफ़ दे, कोचिक एसिड जो जिल्द से दाग धब्बे खत्म करे, और विटामिन सी, ग्लूटाथायोन और आर्बोटिन जैसे वाइटनिंग एजेंट्स जो आप खुद ही एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हेमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। Pink Diamond Glow by Hemi Naturals.

0: हाण नरम चमक ऐं साफ जिल्द रुगो हिक क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिंमें शामिल आहे एसपीएफ 30 सिज जे नुकसानकार किरणन खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जिल्द मां दाग धप्पा निशानात खत्म करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आर्बुटिन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम लिसनर्स जीएस अखर एफएम 88 जी लाइव स्टूडियोज का प्रोग्राम रौनक महफिल साण करे आवाजो पैंजो मेज़बान बाबर शेख इन्हीं उम्मीदन सां त अवां बिल्कुल ठीक ठाक हूंदा अल्लाह पाक अवां सभिनी ते पंहिंजी रहमतुनि जा साया बरकरार रखे अवां जिते हुजो खुश हुजो आबाद हुजो दोस्तों बिल्कुल रौनक महफिल प्रोग्राम आहे जीए सखर एफएम 88 आहे ऐं जीए एफएम नेटवर्क आहे 8 वॻे ताईं अहां जो असांजो साथ हिन प्रोग्राम में इनशाला अॼु बि जारी रहणो आहे तारीख़ जी गॾु ॻाल्हि कयां त 12 मई 2026 तारीख़ आहे ऐं अंगारे जी शाम आहे 7:13 टाइम थियो आहे यानी प्रोग्राम मां बिल्कुल लाइव ॿुधी रहियो आहियां मूंखे ख़बर आहे त एवरी ट्यूसडे प्रोग्राम में सेगमेंट हूंदो आहे ॻाइण वॼाइण जेको अव्हांजो तमामु घणो फेवरेट सेगमेंट त दोस्तों हिन ॻाइण वॼाइण सेगमेंट में अवां पंहिंजी प्यारी प्यारी मिठड़े मिठड़ी आवाज़ में असांखे गाना ॻाए करे मोकिलींदा आहियो जेके मां प्रोग्राम में शामिल कंदो आहियां जेके हेमे ब्यूटी क्रीम ते हूंदा आहिनि ऐं वरी मां अव्हांखे वॼाए ॿुधाईंदो आहियां उहे गाना जेके अव्हां फरमाइश कंदा आहियो जी हा यानी अव्हांजी फरमाइश बि सेगमेंट आहे प्रोग्राम में त दोस्तों बिल्कुल सिंपली तव्हांखे करणो इहो आहे त तव्हां पंहिंजे प्यारी प्यारी मिठड़ी आवाज़ में असांखे गानो ॻाए करे ॿुधाईंदो जेको हेमे ब्यूटी क्रीम ते हूंदो उहे नाला मां नोट करे वठंदोसीं आख़िर में वरी वोटिंग वारो सिलसिलो बि कंदासीं इनशाला अवां लाइव कॉल या व्हाट्सएप ज़रिए मूंखे जॉइन करे सघंदव असांजो लाइव कॉलिंग ऐं व्हाट्सएप नंबर आहे 03000113488 ऐं मैसेज बि तव्हां सेंड करे सघो था मैसेज जे लाइ एस के आर लिखो स्पेस ॾियो पंहिंजो मैसेज 8881 यानी 8881 ते सेंड करे छॾियो ऐं फेसबुक ते ॿुधण जे लाइ असांजो फेसबुक पेज आहे एफएम 88 ठीकु आहे उते अची करे तव्हां ॿुधी सघो था गॾो गॾु दोस्तों तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हीउ स्पॉन्सर शो आहे अवां ताईं पहुचाइण लाइ तव्हां कयो आहे हेमे नेचुरल्स वारनि त हेमे नेचुरल्स वारनि जो पैगाम बि जेको मुंहिंजे ज़िमे आहे अवां ताईं पहुचाइण उहो तव्हां ज़रूरु ॿुधंदा हलो बिल्कुल हेमे नेचुरल्स वारनि दावा कई आहे त हिननि जी प्रोडक्ट आहे हेमे ब्यूटी क्रीम जंहिंमें शामिल आहे एसपीएफ 30 कॉजिक एसिड ग्लूटाथायोन वाइटामिन सी आर्बुटीन ऐं ॿिया केतिरा ई नेचुरल इनग्रीडियंट्स जेके अवां जे चेहरे जी स्किन जे लाइ तमामु घणा फ़ाइदेमंद आहिनि बिल्कुल दोस्तों हेमे ब्यूटी क्रीम जंहिंमें शामिल आहे एसपीएफ 30 अवां खे सन प्रोटेक्शन ॾिए पियो कॉजिक एसिड चेहरे तां दाग धबा निशानात जो ख़ात्मो करे पियो ग्लूटाथायोन वाइटामिन सी ऐं आर्बुटीन अवां जे चेहरे जी स्किन खे कनि पिया बिल्कुल नेचुरली ग्लो जी हा अवां जे चेहरे ते अगरि जेको आहे त नेचुरल गिलो नाहे अवां जे चेहरे ते दाग धबा मोहिड़ा आहिनि गॾो गॾु कुदरती निखार जी कमी आहे त इहा कमी पूरी थी सघे थी सिर्फ़ हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे इस्तेमाल सां तव्हां जॾहिं हिन खे इस्तेमालु कयो था त 7 डेज़ जे अंदरि अंदरि तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिले पियो ऐं तव्हां पाण पोइ अंदाज़ो लॻाए सघो था त वाक़ई साईं हेमे त हेमे आहे ऐं अवां जे चेहरे खे जॾहिं नेचुरली गिलो मिलंदो न कुदरती निखार मिलंदो न त तव्हां पाण अंदाज़ो लॻाए सघंदव त वाक़ई हेमे हेमे आहे सही था चवनि बिल्कुल ऐं जेकॾहिं मां हिन जी प्राइज़ जी ॻाल्हि कयां त 330 रुपीज़ हिन जी प्राइज़ आहे 330 to 360 वेरीज़ करे पई ऐं अवां जे शहर जे वेझे स्टोर ते आसानी सां तव्हांखे हेमे ब्यूटी क्रीम मिली सघे थी जेकर हिन मिले या वधीक तव्हांखे का मालूमात घुर्जी अबाउट द प्रोडक्ट त तव्हां हिन जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे सघो था इन्हनि जो हेल्पलाइन नंबर आहे 03677135407 जी हा नंबर वन सेकेंड रिपीट कयां पियो त जीअं तव्हां आसानी सां नोट करे सघो 03-36-71-35-407 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे सो दोस्तों अव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त हेमे ब्यूटी क्रीम जेका आहे न इन जो तरीक़ा इस्तेमाल जेको हिन रिकमेंड कयो आहे उन ते तव्हां अगरि इहा प्रोडक्ट इस्तेमालु कंदव त तव्हांखे इन जो वधीक रिज़ल्ट मिली सघे थो करणो छा आहे त तव्हांखे सिंपली हेमे ब्यूटी क्रीम ते पहिरां मेक श्योर करणी आहे त तव्हां पंहिंजे वेझे दुकानदार खां हेमे ब्यूटी वरिती आहे देन तव्हां राति जो सुम्हण खां पहिरियां चेहरे खे वॉश कंदा ऐं पोइ चेहरे ते हेमे ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा जिते दाग दबा मोहिड़ा हुजनि उते थोरी वधीक क्वांटिटी में तव्हां हेमे ब्यूटी क्रीम लॻाईंदा पोइ सुम्ही रहंदा जॾहिं सुबुह जो उथंदव चेहरे खे वॉश कंदव त पोइ तव्हांखे फील थींदो त वाकई यार इन जो रिज़ल्ट बिल्कुलु ऑसम आहे ऐं तव्हां जॾहिं हिनखे इस्तेमाल कंदा रहंदव त विद इन 7 डेज़ तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट जेको मिलंदो न तारीफ़ जोगो हूंदो। त दोस्तो हैमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेकॾहिं जेको आहे हिन सां गॾु तव्हां पंहिंजी प्यारी प्यारी सेल्फी असांखे व्हाट्सएप ते सेंड कंदव त तव्हांजी उहा सेल्फी कुरानदाज़ी में शामिल थी सघे थी ऐं एवरी वीक असां कुरानदाज़ी कंदासीं सेल्फी मिनर ऑफ द वीक 500 रुपियनि जो कैश इनाम मिलंदो। हाणे एवरी वीक त पंहिंजी जॻह ते पर हिन जेका आख़िरी कुरानदाज़ी थींदी न उहा थींदी हिन थर्सडे ते। जी हा जेको आहे न खमीस ते थींदी कुरानदाज़ी छाकाणि त खमीस ते ही प्रोग्राम लास्ट हूंदो देन असां कुझु पास कंदासीं छाकाणि त जेकी स्पॉन्सरशिप करे रहिया आहिनि हैमे नेचुरल्स वारा उहे थोरा थकजी पिया आहिनि। वेल इट्स ओके कुझु टाइम लाइ असां बि साई पटंदासीं ऐं तव्हां अगरि वधीक हिन मुतालिक़ को बि फीडबैक ॾियण चाहियो त तव्हां हिन जे हेल्पलाइन नंबर ते ॾेई सघो था 0336713547। नंबर वंस अगेन रिपीट कयां पियो 0336713547। त तव्हां सेल्फीज़ जेके आहिनि धड़ाधड़ मोकिलियो त जीअं मां वेंदे वेंदे हिकड़ी सुठी कुरानदाज़ी करे वञा ऐं मूंखे ख़बर पए त जिन जिन हैमे ब्यूटी क्रीम इस्तेमालु कई आहे उन्हनि प्यारी प्यारियूं सेल्फीज़ मोकिले हिन प्रोग्राम खे जेको आहे न बाक़ाइदा तौर ते सुठी मोट ॾिनी। ठीकु आहे सो सेल्फी सेंड करण लाइ असांजो नंबर अथव 0300113488 0300113488 इन नंबर ते तव्हां सेल्फी असांखे सेंड करे सघंदव। सो प्रोग्राम में ॻाइण वॼाइण सेगमेंट आहे ऐं ॿियो सेगमेंट आहे जेका आहे अहां जी फरमाइश। सो इन ॿिन्हिनि सेगमेंट में तव्हां पार्टिसिपेट करे सघो था। हींअर प्रोग्राम जी शुरूआत में तमामु प्यारो प्यारो कलाम मां सभिनि जे लाइ प्ले करे छॾियो आहे सजाद अली जी आवाज़ में। ही ॿुधो ऐं मूंसां गॾु रहो रौनक महफ़िल में पूरे 8 वॻे ताईं।

0: गैजेट जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हैमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस। जो आपको दे एक खूबसूरत चमकदार और नेचुरल ग्लो। हैमी नेचुरल्स पिंक ग्लो ब्यूटी क्रीम, हर दिन हो एक नया ग्लो, एक नया कॉन्फिडेंस।
1: एकड़ो ही वॉइस नोट आए
2: सर, ता प्रोग्राम बुधी रहे हैं, प्रोग्राम हले तो हैमी ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल कंदा आयूं सर। ता बुधायो सर, प्रोग्राम जबरदस्त हली रहियो आए, आऊं ता प्रोग्राम में शामिल थियो आ, असा एक सुठो सॉन्ग
1: अदा मुख्य लगे भी प्रोग्राम बुध को फिलहाल वॉइस नोट तवाज आयो है, अहां की फरमाइश सेगमेंट से गो गुड गायण वरियाण भी है। ही वॉइस नोट
3: बाबर जानी अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहि सलाम अदद सरकड़ाल खुश आयो तभी सही आ मां जवार मोहम्मद बचल शंपण बिकल है नारो आदि 186 गांदर आज गायण वजाने के सिलसिले में तो आज प्रोग्राम आए दिल थी चेद मां आज भी ता के गानो बुधाया

0: ठीक है भा जवार मोहम्मद बचर शंबाणी साहब मजो थी वियो भा हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जी तवा गानो गाए करे मोकलियो आई गायण वजाण सेगमेंट जो बाकायदा तौर से आगाज थी चुको है तवा जी ने वॉइस नोट सा सो एकड़ो बियो वॉइस नोट शामिल किया पियो
1: अस्सलाम वालेकुम मीर प्रकाश गोठ वली मंदिरन खा इम्तियाज अली बंगलाणी बाबर भा हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में सॉन्ग दा बजायो आज गायण वजाण जो सेगमेंट आ हेमे ब्यूटी क्रीम जो हीवा जो रिजल्ट प्यारो वा हेमे ब्यूटी क्रीम जो प्यारो रिजल्ट वा मु हेमे ब्यूटी

0: एक खूबसूरत थी ओ आई है मे ब्यूटी क्रीम जो प्यारो रिजटवा है मे ब्यूटी क्रीम लगाई मु चेहरो पांजो बनायो चेहरे जी आरोनक है मे ब्यूटी क्रीम वा और वा मुझे कुछ दोस्तन लगारी पंप का जमा लाशारी ताजो प्रोग्राम बुद्धि रहे वा काठरी का था गुलाम रसूल मरी विलेज मानव शाम यूसी वी क्या संग डिस्ट्रिक्ट लड़कने का असा जो प्यारो दोस्त अशरफ अली मिराली सज्जन अली मिराली तनवीर अली मिराली आसिफ चाचर लाड़काने का ताजो प्रोग्राम बुद्धि रहे वा शराज अली बंगलानी मम बिलावल बंगलानी नडो दिलावर अली बंगलानी अयाज अली बंगलानी अस्सलाम वालेकुम या अली मद
1: वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद अदा तांजी मेहरबानी भा इम्तियाज प्रोग्राम में शामिल थे तवा आई तवा जो वॉइस नोट जबरदस्त यार गायन वडायन में तवा गानो गायो एकडो बियो वॉइस नोट आए बुधो ही छापया छवन
2: बाबर साहब अस्सलाम वालेकुम सिकबर सलाम वफा अब्दुल वहीद जतोई केटी शाबेलो उम्मीद आ त खुश हूं खुशहाल हूं यार तू छे वन गाल तो करी अस जो अगे दम तो वही बेली मेहरबानी कर छे वन गाल न कर हाँ केदी शदीद गर्मी आ पर असा के तुझो ये प्रोग्राम शुरू छो जन तो असा का माना ईसो तो बाग बार छ दिल तुझो शो कलाक घंटो बुधना ढी बेहतरीन हूँ यार छे वन गाल न कर जे हेमी बीटी क्रीम वारा तोखे छॾिन था त पोइ बि हिकु कलाकु महिरबानी कजांइ बाबा तुआरे हिन प्रोग्राम खां असांजो जियापो न थींदो बाक़ी ॻाइण वॼाइण जो सेगमेंट आहे त मां थोरो ॻाईंदुमि हेमी बीटी क्रीम अदा यार लॻायो हेमी बीटी क्रीम अदा यार लॻायो दाग धबन खे ओ दाग धबन खे यार वो भजायो हिमी बीटी क्रीम यार लगायो छो हाँ लाए हथ कयो थव हिमी बीटी क्रीम त आहे भली छो हाँ लाए हथ कयो थव हिमी बीटी क्रीम आहे भली वठी अचो भराए छली वठी अचो भराए छली चवे बाबर साहब बाक़ी असांखे फरमाइश में मास्टर मंज़ूर ज़रूरु ॿुधाइजो त ॾिसो यार मुंहिंजे जूं क़ुर्बानीूं ऐं ॿियो गुलाब शाह सैद मूंखे यादि कंदो आहे उन खोड़ सरा सलाम गुलाब शाह सैद खे आसिफ़ चाचड़ लाड़काणे खां मुंहिंजो भाउ आहे ज़हीर में जतोई मुंहिंजो भाटियो आहे अयाज में जतोई बाक़ी जेके ॿुधंदा वफ़ा अब्दुल वहीद जतोई पर सॼे सत खे सलाम ऐं असांखे छॾे न वञिजांइ बाबा उहे हथ जोड़िया वे
1: साईं मोहबत हूं यार अब्दुल वही जतोई साहब ईअं ॻाल्हियूं कंदे यार मुंहिंजो दिलि भरिजी ईंदो सफ़ा ईअं न कर बेली मां गाना अहिड़ा थो ॿुधायां कुझु फ़ासिलो इनशाला कोशिशि कंदासीं वरी जल्दी मोटींदासीं तव्हां टेंशन न कयो बाक़ी हेमे वारनि खे तव्हां कॉल करे हुननि खे फीडबैक ॾेई सघो था हिन जी प्रोडक्ट जे बारे में बहरहाल जिन जिन इस्तेमालु कई आहे उहे ॿुधाए सघनि था त कीअं लॻी ऐं तक़रीबन 7 महीना थी विया यार हिन स्पॉन्सरशिप कई ऐं हिन प्रोग्राम खे पाण हलायोसीं ऐं ॾाढो मज़ो आयो मूंखे तव्हां सां टाइम स्पेंड करण में मूंखे तमामु घणो मज़ो ईंदो आहे तव्हां जूं मोहबतूं जॾहिं मिलंदियूं आहिनि न दिलि चवंदी आहे त छॾे वञण जूं ॻाल्हियूं न कयां तव्हां सां गॾु मूंखे बि ॻाइण वॼाइण अची वियो आहे सो ही आहे मीर मिठल मक्सी फ्रॉम विलेज गुलाम हैदर डेरो नियर कंबर अली खान से चवंदो आहे एनी सॉन्ग ऑफ मंज़ूर सकीरानी डेडिकेटेड बाय अब्दुल खालिक साहब ठीक है खुदा बख्श डेपर डेपार जगह सलाम अदा नाइस प्रोग्राम अदा साईं ममताज लाशारी जो सॉन्ग सुनाना ओके जुलरी खा खालिक लाशारी साहब बुधन पे ममताज लाशारी प्ले कर हाँ बिन ऐण ममताज लाशारी एकड़ी ऋण मंज़ूर सकीरानी तो पेरियो मैसेज मुँह पढ़ो मंज़ूर सकीरानी जो यार मंज़ूर सकीरानी प्ले क्या पे ममताज लाशारी प्ले कदुस बुधाई लिसनर्स गायण वजायण में तुम भी असा ज्वाइन कर सो था हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम तुम गाना गाय कर असांखे सेंड कंदो त तव्हां कुरानदाज़ी में शामिल थी वेंदो ऐं सेल्फी विनर ऑफ द वीक खे 500 रुपियनि जो कैश इनाम मिलंदो ठीकु आहे त तव्हां सेल्फी जे लाइ अच्छा परींहं इनशाला सुभाणे अरबा परींहं ख़मीस ते इनशाला मां कुरानदाज़ी कंदुमि ऐं तव्हांजी सेल्फीज़ अनाउंस कंदुसि 500 रुपियनि जो कैश इनाम हुनखे मिलंदो जंहिं सेल्फी मोकिली आहे कुरानदाज़ी ज़रिए ठीकु आहे सो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम घर में हर फिट लाइ फ़ाइदेमंद आहे अधियूं हुजनि तोड़े अधा हुजनि इनखे बेफ़िक्र थी करे इस्तेमालु करे सघनि था ऐं विद इन 7 डेज़ तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे थो तव्हां जो फायदो हासिल करे सघो था ऐं जेकॾहिं अहां इस्तेमाल कंदा अचो पिया रुटीन लाइफ में शामिल करे छॾियो अथव त वाह वाह साईं पोइ ईद वारे ॾींहं ते तव्हांखे को फैशियल वग़ैरह कराइण जी मां सम्झां पियो ज़रूरत न पवंदी अच्छा त हीउ गानो ॿुधूं पिया मंज़ूर सकीरानी जी आवाज़ में

0: वाडी गर्मियां लगी पई सफा का गाल न पी वणे बस छा करूं बे खैरा खुशी दा अदा को सुठो गानो बुदा को बरसात दा लगा बरसात खुले हवा का मौसम जारी थे भा अस्सलाम वालेकुम बाबर बा केड़ा हाल है खुशी ते सही है अदा जे ता अशरफ सोलंगी बोगल
1: अदा अशरफ ता जी मेहरबानी मा बिल्कुल ठीक ठाक है बाकी बा गर्मी ते वाकई आहे गर्मी ते आहे या फेस करनी है पान के एकड़ो ही
2: प्रोग्राम खत्म न

0: चमक ऐं साफ़ जल्द रुगो हिकु क्रीम जी दूरी ते पेश आहे हेमे नेचुरल्स जी डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जंहिं में शामिल आहे SPF 30 सिज जे नुक़सानकार किरणनि खां बचा लाइ कोजिक एसिड ऐं जल्द मां दाग धप्पा निशानात ख़तम करण लाइ विटामिन सी ग्लूटाथायोन ऐं आरबोटीन जेके ॾियनि तव्हां जे चेहरे खे कुदरती साफ़ ऐं चमकदार ग्लो रोज़ानो इस्तेमाल करियो हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ऐं हासिल करियो नओ ग्लो नओ एतमाद हर ॾींहुं हुजे हिकु नओ ग्लो हिकु नओ कॉन्फिडेंस हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम
1: जी लिसनर्स बिल्कुल ममताज लाशारी जी आवाज में आए कलाम ढो वे मुखे सिर लगे सोहणे सजण सा सिर लगे यार वाह वाह अड़ा गाना मां हलाइंदुमाव न मजो अची वेंदव बहरहाल मुखे तो मजो अवां जे वॉइस नोट्स मां अचे पियो पर अलाए छो तव्हांजा वॉइस नोट्स भी जेके न मुखे लॻे पियो दुख में घट जी आने आई डोंट नो वाई बट तवा ये दुखल थी रिखायल थी न पो ये न परी खमीस का पेरे सुबाने मा चवा बस स्टार्टअप वाई यार परी ताई तो हलण जो बेली बडी है बडी है तो जो प्रोग्राम में सो लाइव कॉलिंग वाला नंबर ऑन कर तो मामा तवा अचो लाइव कॉल के जरिए भी मुखे जॉइन कर सको था सा नंबर है 03-000-11-3488 एकड़ो ही वॉइस नोट अचो तो बुधो
2: अस्सलाम वालेकुम बवर बादशाह आला कुछ आयो टाट मगर में बाक़ी हेमी बीटी क्रीम वी आई पी आहे ज़बरदस्त आहे असां इस्तेमाल कयूं था पिया तंहिंखे चवणी दाग दॿा मोड़ा मिटाए थी सघे चवणी असांखे को सघंदा सुठो गानो तव्हां पंहिंजी पसंदि ते ॿुधाइजो तव्हांजी महिरबानी थींदी डेडिकेट कयां थो असांखे जाणी दोस्तनि मुंहिंजा अख़्तियार मीराणी बख़्तियार मीराणी साकिब गुल मीराणी जागर गुल मीराणी
1: हाज़ुर साईं खे चवाणी हाज़ुर साईं हाज़ुर तव्हांखे बिल्कुलु मां प्रोग्राम में ॿुधायां पियो ऐं गॾो गॾु तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां लिसनर्स हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहे न इहा इस्तेमाल करे तव्हां चेहरे तां दाग धबा निशानात जो ख़ात्मो करे सघो पिया ऐं विद इन 7 days तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे थो जी हा ऐं तरीक़ा इस्तेमालु तव्हांखे मां ऑलरेडी ॿुधाए चुको आहियां गॾो गॾु हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेका आहे जेको आहे तव्हांजे शहर जी शाही बाज़ार में तव्हांखे आसानी सां मिली सघे पई तव्हां दुकानदार खां नालो वठी ख़रीद करे सघो था जेकॾहिं न मिले या वधीक मालूमात लाइ तव्हां हिन जो नंबर आहे उन नंबर ते कॉल बि करे सघो था नंबर आहे 03-6-7-1-3-5-4-0-7 जी हा 03-36-71-35-407 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम अवेलेबल आहे ठीकु आहे सो जी हलूं था कॉलर जी तरफ़ ऐं लेट्स सी लाइन ते करे केरु आहिनि अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
3: वालेकुम सर
1: अदा केरु था ॻाल्हायो भाउ केरु था ॻाल्हायो ख़ान मोहम्मद
3: जान मोहम्मद
1: जान मोहम्मद साहब साईं जान साहब छा हला ठीक आयो अलाह जो शुक्र आहे साईं ॻाइण वॼाइण सेगमेंट आहे कुझु ॻाईंदो या असां कुझु वॼाए ॿुधायूं तव्हांखे असां वॼाए ॿुधायूं ठीक आहे शमन मीराली ॿुधायांव जी जी नाला ॿुधायो दोस्तनि जा हलो ठीकु आहे सो दोस्तो अदा ज़वार मोहम्मद बचल शवाणी चए पियो वोट कराए बिल्कुलु भाउ यार सुठो यादि करायव दोस्तो जिन गाना ॻाया आहिनि हुननि में नाला शामिल आहिनि 3

0: तव्हां चयो न त पाकिस्तान अचिजो त पोइ तव्हांखे हिन ब्यूटी क्रीम जेकी आहे उहा तव्हांखे ॾींदमि, पर मां आयो हुउमि तव्हां तव्हां सां राब्तो बि न कयो, मूंखे कराची में उहा क्रीम न मिली, ठीकु आहे, ऐं भला तकड़ में वञो था भला ख़ैर त आहे, तव्हां बि वञो था, भेण सुमेरा बि वई हली
1: अदा प्रोग्राम आ तो वने बाकी इते ही आया इंशाल्लाह नए प्रोग्राम में मुलाकात थींदी भाई स्पॉन्सर शो आए न तो स्पॉन्सरशिप रुगो खत्म पई थे बाकी असा वेठा आयो भा तां टेंशन न कयो तां के एंटरटेन कंदा रहंदासी ठीक है सो अवां जी मोहब्बत बाकी तां भी काफी अरसे का पोई ज्वाइन करवाए खैर ताई बाकी तां पाकिस्तान आया होयो मुखे खबर ही कोन पई बहरहाल तां के भली कार चाऊ था पाकिस्तान अचण ते एकरो ही वॉइस नोट
2: हेलो बवर भाई अस्सलाम वालेकुम केड़ा हाल दे खुशा दफा अमन मां अब्दुल रहमान जागरानी तो गलाया खेल लगो दफा अमन असां बि तव्हांजे चैनल में शामिल थियल चाहियां ॿियो ख़ैरु लॻो आहे त पर हेमन ब्यूटी क्रीम असांजे शहरनि में नथी मिले या किथां मिलंदी
1: वॼाए छॾे यार हेल्पलाइन नंबर ते कॉल करे इन्हनि खां पुछ हेल्पलाइन नंबर आहे 0336-7135-407 नंबर वन सेकेंड रिपीट कयां पियो 0336-7135-407 लेट्स सी नेक्स्ट कॉलर केरु आहे अस्सलाम वालेकुम अदा केर था गलायो भा
3: हुसैन बख्श
1: जी अदा हुसैन बख्श प्रोग्राम बुधो पिया चलो साईं बिल्कुल तव्हांजो दुख पंहिंजी जॻह ते बिल्कुल सही आहे मां इहो दुख दूर पियो कयां हाणे कॉलर खे वधि खां वधि टाइम ॾींदुसि ठीकु
3: आहे
1: जी जी जी जी साईं हाज़ुर साईं वोट कंहिंखे कंदो कंहिं सुठो गानो गायो आहे ओके तव्हांजी महिरबानी साईं शामिल थिया तव्हां थैंक यू
3: सर हिकिड़ो अर्ज़ु आहे हिकिड़ो अर्ज़ु नंढो
1: जी जी
3: ऐं मां बिल्कुलु मूं वटि सिस्टम आहे जेको असांजो तस्वीर सेंड खणंदो मां
1: कीअं लॻंदी आहे तव्हांखे
3: बिल्कुलु बहितरीन सर ऐं मां यूज़ बि आहियां बसि असांजे घर में उहे हिकिड़ी मदद कंदा
1: चलो साईं लख थोरा तव्हां शामिल छा प्रोग्राम में वेलकम जी वेलकम त दोस्तो हिकिड़ो ॿियो कॉलर शामिल कंदासीं ऐं ज़वार मोहम्मद बचल शबाणी साहब खे वोट पियो आहे ऐं अव्हां जी फरमाइश सेगमेंट में हींअर जेका फरमाइश बची आहे उहा शमन मीराली जी बची आहे ठीकु आहे त वेंदे वेंदे शमन अली मीराली साहब जी आवाज़ में प्यारो गानो अव्हां जे लाइ प्ले कयूं थो वञा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम
3: वालेकुम
1: केर था ॻाल्हायो साईं अलाह जो शुक्र आहे तव्हां पंहिंजो ॿुधायो जी मंगराट साहब इहो ॿुधायो कंहिं सुठो गानो गायो आहे कंहिंखे वोट कंदो
3: बचल सभाणी भलो गायो इहो ज़बरदस्त आहे प्यारो आवाज़ मिठड़ो मिठड़ो घुरिजे थो हर मेट में
1: हलो साईं तव्हांजो वोट ज़वार मोहम्मद बचल खे तव्हांजी वॾी महिरबानी अलाह जो शुक्र आहे तव्हां ख़ुशि हुजो हींअर मां शमन मीराली पिले कयां पियो तव्हांजे ओके साईं ओके त दोस्तो ज़वार मोहम्मद बचल शंबाणी साहब खे वोट पिया आहिनि ॿ यानी ज़वार मोहम्मद बचल शंबाणी साहब विनर आहिनि ऐं हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जे बारे में जेका मां अव्हांखे मालूमात ॾिनी आहे उहा तव्हांजे लाइ तमामु घणी फ़ाइदेमंद आहे हिन में शामिल आहे SPF 30 जेको अव्हांजे चेहरे तां चेहरे खे अव्हांखे स्पेशली सन प्रोटेक्शन ॾिए पियो चेहरे तां दाग धबा निशाना जो ख़ात्मो थिए पियो ऐं तव्हांजे चेहरे ते जेका ग्लोइंग अचे पई ऐं कुदरती निखार अचे पई हुनजी ॻाल्हि बि आहे विद इन 7 days तव्हांखे हिन जो रिज़ल्ट मिली सघे थो ऐं तव्हां जॾहिं हिनखे इस्तेमालु कयो तव्हांजे चेहरे खे कंहिं आर्टिफिशियल फेशियल जी ज़रूरत न पवंदी आई थिंक सो तव्हां हिनखे इस्तेमालु करे आज़माए सघो था जिन इस्तेमालु कई आहे हुननि इहो ई फीडबैक ॾिनो आहे बाबर भाउ वाकई तव्हां सही पिया चओ त हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम जेकॾहिं अव्हांजे शहर में अवेलेबल न हुजे त तव्हां हिननि जे हेल्पलाइन नंबर ते कॉल कंदव इन्हनि जो नंबर आहे 0336-7135-407 नंबर वन सेकेंड मां रिपीट कयां पियो 0336-7135-407 इन नंबर ते तव्हां कॉल करे हेमे ब्यूटी क्रीम जे बारे में हिननि खां मालूमात वठी सघो था ऐं जी पुछी सघो था त तव्हांजे शहर जे वेझे कहिड़े स्टोर ते हेमे नेचुरल्स डायमंड ग्लो

बीटी क्रीम अवेलेबल आहे. सो जी कॉलर जी तरफ हलंदो सा ही अॼु के प्रोग्राम जो लास्ट कॉलर आहे. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. चलो मां जॾहिं बि लास्ट कॉलर अनाउंस कंदो आहियां पोइ उहो कॉलर जेको आहे थींदो आहे ईअं कीअं. अस्सलाम वालेकुम. जी केर सां ॻाल्हायो? जी अदा छा हाल आहे? ठीकु आहियो? अलहमदुल्ला. भाउ शमन मीराली जो गानो थो प्ले कयां, कंहिंखे डेडिकेट कंदव? चलो ठीकु आहे, तव्हांजी वॾी महिरबानी. त दोस्तो ज़वार मोहम्मद बचल शमाणी साहब अॼु जे सेगमेंट ॻाइण वॼाइण जो विनर आहे, ऐं ॿिया ॿ सिंगर जिन सुठा गाना ॻाया, इम्तियाज़ बंगलाणी साहब ऐं वही दली जतोई साहब. त ज़वार मोहम्मद बचल शमाणी साहब जे नाव ही प्यारो प्यारो गानो शमन अली मीराली जी आवाज़ में, ऐं उन्हनि लिसनर जे नाव जिन प्रोग्राम में शामिल थी करे एमए नेचुरल्स डायमंड ग्लो ब्यूटी क्रीम ते ॻाइण जी कोशिश बि कई ऐं फीडबैक बि ॾिनो. अगले प्रोग्राम ते मुख्य दियो इजाजत. सदाई गद अल्लाह हाफिज़ ऐं ज़िंदगी बख़ैर.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN
1: असेंबली आपके साथ खड़ी होगी और कहेंगे मैं मैरिट नहीं हुआ है तो आप सबूत लेके आए एंटी करप्शन में केस रजिस्टर करवाएं नैब को दें हम आपके साथ खड़े होंगे मगर ऐसे किसी पे इल्जाम लगाना चीफ मिनिस्टर पे चेयरमैन पे ही नाजायजी है।
2: ये जो सिफारशी कल्चर है ना हमारे यहाँ पहले ही बहुत ज्यादा है हमारे सूबे के अंदर तालीम के अंदर भी इसका बहुत असर रसूख है मैट्रिक के बोर्ड हो या इंटर बोर्ड हो उस पर भी प्रॉब्लम होती है अदालती कमीशन बनना चाहिए और इसकी जो है वो तहकीकात होनी चाहिए।
3: तो मैं समझता हूं कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के जो वसीम अहमद साहब हैं जो हेड हैं उसके वो पूरी तरह नाकाम मेरिट कायम करने में नाकाम होंगे उनको इस्तीफा देना चाहिए और सिंध के नौजवान चाहे वो किसी भी शहर से ताल्लुक रखते हुए उनको उनका हक मिलना चाहिए।
4: पूरे सिंध को किसी वडेरे की औकाफ की तरह चलाया जा रहा है। जिन लोगों ने CSS में 11 के 11 पर्चे फेल हुए थे जो लोग 11 के 11 पर्चों में वो सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में कमीशन ले रहे हैं।
5: सिंध असेंबली में अपोजिशन MPS सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन की चटाभेटी इम्तिहान 2024 के नतीजन शफाफ जांच कराने जो मुतालबो कर छो हुकूमती धुर के वजीर MPS भी है तो रुगो इल्जाम से न हलन घुर्जे कें वट साबतू आन तो सामू आने इदारा मौजूद आन वो वजीर भी मामले के ऐसी रो है।

0: जे काथे का ज्यादती थी या का गलत गाल थी या तो उन्हें जो आजाद उथड़ खपे। मुझो पुट अकबर अब्बास जा फॉरन रिटर्न भी आ हाईएस्ट मार्क्स थोस रिटर्न इंटरव्यू में पास न थो यह खबर तो कें को नहीं दब नासिर शाह के पुट के जेका है पब्लिक सर्विस कमीशन में नौकरी न मिली।
1: कल में के फोरम्स हूंदा जिथे उनकी शिकायत बुधी वाले
2: ये मुख्य ना खबर को ये चीज आए को कें इन्वॉल्वमेंट आए अगर होती तो सीएम साहब कभी भी इसे बर्दाश्त न करो।
3: अगर इस तरह की बात रेज हुई है तो इसका जरूर जो है डिपार्टमेंट जो है वो इसकी तह तक पहुंचेगा और दिखेगा। हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि हमारे नौजवान जो है उनके साथ कोई भी गलत हो।
4: सिंध हुकूमत इनके जांच कराईंदी जाहिरी गल आवाम भी यो ही चाहे तो फ्री एंड इम्पार्शल अगर इंक्वायरी थी तो उनमें सचो साबित थी वो जी शे गलत होंगी तो वह बदली थी।
5: गडियल चटाभेटी 2024 के इम्तहान में मेरिट के मुबैन लटाड़ खिलाफ सुपाने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस अगैं धरने जो ऐलान। उम्मीदवार सिंध यूथ एक्शन कमेटी वकील अगवाड़न बेन की हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कदे मेरिट की लटाड़ खिलाफ सुपाने अलामा दाऊद पोटो लाइब्रेरी का एहतजाजी रैली कढ़ी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिस अगैं धरणो हयो वो पैंजा नवाजी कर अहल उम्मीदवार के हक से धाड़ो हयो वो है। केस दाखिल कराने से आवाज दबाए नो सकें।

0: सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ताजा नतीजन खिलाफ सिंध असेंबली में ठहराव जमा साल 2024 के जारी कल चटाभेटी इम्तिहान जा नतीजा मुअत्तल करण जो मुतालबो इम्तिहानी अमल मार्किंग मेरिट लिस्ट की शफाफ जांच लाए पंजाब के फॉरेंसिक लैब का जांच कराने की भी घुर करप्शन मेरिट के लतार साबित थे कार्रवाई जो मुतालबो ठहराव एमक्यूएम के एमपीए मोहम्मद माज महबूब पारा असेंबली के सेक्रेटरी वट जमा कराया वो
1: अज के डिजिटल दौर में लैपटॉप का आसाइश न पर तालीम हासिल करने लाए जरूरत बनती वही है। सिंध हाईकोर्ट सखर बेंच सिंध में शागिर्दन के लैपटॉप फराम करने लाए 45 डी अंदर पॉलिसी जोड़ने जो हुक्म दई छो। जस्टिस अमजद अली बोयो जस्टिस अली अदा हैदर लिखत में फैसलो जारी करते सिंध हुकूमत के हुक्म दिनों त 45 डी अंदर पॉलिसी जोड़े स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज के मुस्तक शागिर्दन के लैपटॉप दिना वन लैपटॉप स्कीम ईंदड़ माली साल की बजट में भी शामिल करने जो हुक्म